भोर सुहानी शो में मैं पंकज आपके साथ हूं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो ठंडे ठंडे गाने सुनाऊं जिससे कि आपको थोड़ी सी ठंडक फील हो। सुबह के 5:33 अभी दिल्ली का मौसम जो है थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है, तो मतलब अभी आप बाहर घूम सकते हैं, अपना बढ़िया ताजी हवा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लता जी की आवाज में ये रहा

आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर सुनने वाले सभी सामीन को आज की मजलिस में हम खैर मकदम करते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, शक्सुमत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 8 तारीख यानी 1447 हिजरी के जिलहज की 12 तारीख मुताबिक 29 मई सन 2026 ईस्वी। सुबह के 6:34 हो रहे हैं। हम आज की मामूल की नशरियात का आगाज़ करते हैं।

0: भारतीय ऋतु विभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायां अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में

0: तथा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: Bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 MHz पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब पेश होता है बराह रास्त शो पयामे सुब। प्रोग्राम से पहले एक वक्फा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट।
9: रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में। 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
12: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469874277 पर राबिता कायम करें।

0: सुबह नौ की पहली किरण उम्मीद का एक नया दिभाचा, एक ऐसी रोशन और ताज़ा सहर जो अपने दामन में ख्वाबों की ताबीरें समेटे आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसी सहरंगे सुबह के उजालों में पयाम सुबह की एक और पुरनूर महफिल सज चुकी है। सामने मोहतरम, आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमारी मोहब्बतों का कारवान आपकी दहलीज तक पहुँच रहा है। तमाम सामिन गिरामी की खिदमत में आमिर अशरफ और रिफा तारा का तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम।
1: मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह का नया और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिफा तारा और मेरे साथ हैं आमिर। बताइए अपना हाल चाल, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सामीन भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआगो भी हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, आपको तवील उम्र, सेहतमंद ज़िंदगी दुनिया व आखरत में आफियत अता फरमाए अल्लाह, और आपको अपने पसंदीदा बंदू में शुमार फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: आमिर, अपना हाल चाल बताइए, कैसे हैं आप?
0: बस अल्लाह का करम और आपकी दुआएं। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: करम है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और करम अल्लाह का हम सब पे बना रहे, हम यही दुआ करते हैं। चुना मनाल रॉबसन करम।

0: दोस्तों, अभी जो आपने ये आवाज़ सुनी, ये इस दौर का सबसे बड़ा हथियार है, कंप्यूटर या मोबाइल कीबोर्ड।
1: सच कहा आमिर, पहले जमाने में जब किसी को

0: रिहर्सल ही करना होता था ना, तो लोगों को सामने आना पड़ता था, जुरत करनी पड़ती थी। लेकिन आज आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इखलाक का जनाजा निकालने के लिए सिर्फ एक सस्ता डेटा पैक और एक फर्जी अकाउंट ही काफी है। क्यों आमिर?
1: बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, हम किसी भी पोस्ट के नीचे जाते हैं ना, चंद सेकंड में एक जहरीला कमेंट टाइप करके आते हैं, सेंड का बटन दबाते हैं और फोन जेब में रखकर चाय पीने जाते हैं।
0: सही कहा आपने, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी स्क्रीन पर लिखी वो एक लाइन दूसरी तरफ बैठे एक जिंदा इंसान के दिल पर खंजर बन चली होती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि हमारे इस एक कमेंट ने किसी को कितनी रातों के लिए बेख्वाब कर दिया या किसी को डिप्रेशन के किस दहाई पर पहुंचा दिया।
1: बिल्कुल सही बात। चलिए आज एक सच्ची बात करते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों को ट्रोल करना, इनकी शक्ल, इनके लिबास, इनकी नजरियात का तमस्खर उड़ाना, ये आजादी इजहार नहीं है ना, ये अखलाकी दिवालियापन बन चुका है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आमिर, ये तो एक हकीकत है। आमिर, यकीन मानिए, हम इतने बुजदिल हो चुके हैं कि अपनी असली पहचान छुपाकर अंधेरे में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं हम, और खुद को बड़ा दानिश्वर समझते हैं।
1: सही बात है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर हमारी जबान से निकले हुए अल्फाज और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स हमारे चेहरे पर लिख दिए जाएं, तो क्या हम आईने में अपना चेहरा देखने के लायक रहेंगे? क्या हम मौशरे में सर उठाकर चल सकेंगे?
0: जवाब यकीन नहीं में है तो फिर मोबाइल की इस बेजान स्क्रीन के पीछे छुपकर हम जल्लाद क्यों बनते जा रहे हैं आमिर? मुझे समझ नहीं आ रहा है।
1: देखिए ना, एक डिजिटल चैलेंज ले लेते हैं। अगली बार जब किसी की पोस्ट देखकर आपका हाथ गुस्से या नफरत में कमेंट टाइप करने लगे ना, तो सेंड का बटन दबाने से पहले सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, अगर यही बात कोई मेरे भाई, मेरी बहन या मेरे वालदेन से कहता तो मुझे कैसा लगता?
0: अगर जवाब अंदर से नहीं में आए तो इस कमेंट को मिटा दीजिए। यकीन मानिए, एक जहरीला कमेंट मिटा देना इस दौर का सबसे बड़ा हुस्न इखलाक है।
1: वाह, क्या बात कही आपने। ये उनसे पूछिए जो डिजिटल नफरत का शिकार हुए हैं या जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचा बैठे हैं। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: जहां से आप हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को

पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देव राय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया

0: है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:15 हुए हैं। हमारा अगला ऐलान सुने।
3: डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जे एंड के बवासात जिला ऑफिसर आयुष पुलवामा छु नेशनल आयुष मिशन किस आईईसी कंपोनेंट्स तहत प्रोग्राम पेश करन आयुष सेहतुक जमीन।

0: हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मसनूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
1: उस बेटे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज

0: अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वहां मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे, जहाँ उससे विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरतेहाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरतेहाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 امتحانات میں شامل ہونے والی تمام مرکزی اور شریک یونیورسٹیوں کو امتحان کی نئی تاریخیں اور ایڈمٹ کارڈز جاری کیے ہیں. یہ امتحانات اب اس ماہ کی 31 تاریخ اور آئندہ ماہ کی 6 اور 7 تاریخوں کو ہوں گے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے کل ہونے والے امتحانات کی نئی تاریخ طے کی گئی.

0: है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। आईएमडी के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पैनुलक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुल अक्वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुल अक्वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नज़र राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने एलएसी और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निपटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। हमारा अगला ऐलान समाप्त फरमाए।
3: समीन पेशे खदमत से प्रोग्राम हम सफर, ये प्रोग्राम चु तहता वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर, ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। पयाम सु प्रोग्राम में आइए अब आज की सुर्खियां समाप्त करते हैं।
1: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब समीन, आज जुमतुल मुबारक है। 1400

0: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह
2: सुनो सजना
1: पयामे सुबह।
3: वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आप बराए रास्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त आज की सुर्खियां समाप्त कर रहे हैं। अखबारात के अंदरून सफात पर शाया हुई सुर्खियों पर एक नज़र। अखबारात लिखते हैं, जम्मू कश्मीर राजौरी में सर्च ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल। इसी रोजनामे से एक और खबर, बकर ईद पर ताजमहल में ईद उल अजहा की नमाज, मुस्लिम कम्युनिटी गाय को कौमी जानवर करार देने का मुताला कर रही है।
4: एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों की मुअत्तली में जुलाई के आखिर तक तौसी कर दी। मशरक वुस्ता की कशीदा सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एयर इंडिया ने तल अबीब के लिए अपनी तमाम परवाजें फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है।
3: स्विट्जरलैंड का सफीर कश्मीर की खूबसूरती से मुतासिर, सज्जाद लोन और अतल डिल्लुक से की मुलाकात।
4: जम्मू व कश्मीर बैंक में ईद के पेश नज़र रिकॉर्ड लेन देन। ईद के इस त्यौहार के सीजन के दौरान J&K बैंक ने एक हफ्ते के अंदर 12 करोड़ से जायद ट्रांजेक्शन्स दर्ज किए, जिनकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
3: मनशात के लिए खुफिया केमिकल लैब चलाने वाले गिरफ्तार। इसी रोजनामे से एक और खबर, मशरक वस्ता का बहरान बदल रहा है, दुनिया की तवन्नाई की हिकमत अमली IEA।
4: हुकूमत हिंद ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुल्क की 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से जायद की पहली किस्त जारी कर दी। इस फंडिंग से लाखों देही खानदानों को अपने पक्के घर बनाने का ख्वाब पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।
3: ट्रंप का ओमान के खिलाफ अचानक इंतबाह, तबाह करने की धमकी दे दी। कयास आरिया की जा रही थी कि ट्रंप ने गलती से ईरान के बजाय ओमान बोल दिया है।
4: भारतीय कंपनी नेत्रसमी का बड़ा कारनामा, अपना पहला AI चिप तैयार। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदुस्तान ने खुद इन्हसारी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप बनाने वाली कंपनी नेत्रसमी ने अपने पहले जदीद चिप सेट A2000 का कामयाब तजुर्बा मुकम्मल कर लिया है और इस साल इसकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो रही है।
3: मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और इसके बॉटम लाइन की ये खबर, कब्रस में वजीर खारजा एस जयशंकर की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात, यूक्रेन जंग और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू। 2027 तारीख का गर्म तरीन साल बन सकता है, अक्वाम मुतहदा की चौंका देने वाली रिपोर्ट।
4: इस अखबार की आखिरी खबर, ग्रीन एनर्जी और माहौल दोस्ती की समत में मुल्क को बड़ी कामयाबी मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज कर दिया है। इससे न सिर्फ कार्बन के अखराज में कमी आएगी बल्कि रोजगार के हजारों नए मौके भी पैदा होंगे।
3: खेल सफे से ये चंद खबरें, बुमराह ने T20 क्रिकेट की तारीख का अनोखा और नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खेलों की एक और अच्छी खबर ये कि हिंदुस्तान की मायानाज बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और सातूक चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन में शानदार कारकर्दगी का किया मुजाहरा, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिससे ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें मजीद रोशन हो गई हैं। एक उर्दू रोजनामा रकम तराज है, शदीद गर्मी के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से मोहतात रहने की अपील, पड़ोसी ममालिक से दरअंदाजी, आबादी में होने वाली तब्दीलियां, रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग तश्कील, खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मोदी हुकूमत आवाम को राहत नहीं दे रही है, खड़गे, और एक आखिरी खबर, इंतहाई शदीद गर्मी और लू की सूरत हाल बरकरार रहने की वार्निंग। समय ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
5: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर मायाती साफी ने कल लोकभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात में जम्मू कश्मीर की तरक्याती मंजरनामे के हवाले से कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई हेडक्वार्टर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में उन्होंने 12वीं जमात

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

0: का हमारा थीम है वो हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, जो इखलाकी कदरें हमारे समाज में कम होती नज़र आ रही हैं उनके हवाले से बात हो रही है। और हर दिन का अपना एक थीम होता है और आज जो है वो हम इखलाकियात पर बात करते हैं। और इखलाक जो इंसान को इंसान बनाते हैं, इखलाक जो कौमों को एक मुस्तकिल शक्ल देते हैं, इखलाक जो माशरे में तब्दीली लाते हैं, मस्बत तब्दीली, जिसके लिए इंसान को बहुत ताकीद की गई है कि अपना इखलाक दुरुस्त करें। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शाहीन, जो मेरे साथ इस लाइव शो में बराबर शामिल रहेंगी और इसके साथ आगे भी आपको प्रोग्राम सुनने हैं, बराबर इनके साथ आप इस ट्रांसमिशन में रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ है तो मैंने सोचा कि इनके साथ पहले इनका हालचाल पूछ लेते हैं। जी शाहीन, बताइए हालचाल अपना, कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ और अल्लाह का करम, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है अभी कि आपके साथ बहुत मुद्दत के बाद जो है माइक शेयर करने का मौका मिला, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने।
0: अरे अरे, क्या
1: स्टार्ट में जब एफएम ज्वाइन किया तो आपके साथ ही मौका मिला काम करने का और बहुत कुछ सीखा और सीख भी रही हूँ अभी भी, और इसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमेशा मेरे हेल्प के लिए आगे रहते हैं।
0: अरे अरे, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका सराहने के लिए। ये तो इंसान में असल में एक मादा होता है सीखने का, तो वो सीख ही लेता है। खैर, हम भी अभी सीख ही रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आज मेरा जो शो है वो आपके साथ हो रहा है।
1: शुक्रिया, शुक्रिया। तो यहाँ पे रिफत, आज जो आज के दिन के हवाले से बात करें कि इखलाकियात के बारे में, बहुत बातें मैंने सुबह से सुनी, आपका ट्रांसमिशन था बहुत ही अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छी बातें शेयर की आपने हमारे साथ, लिसनर्स के साथ, क्योंकि मैं भी तब एक लिसनर ही थी जब मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी। तो इस पर जितनी भी हम बात करें वो कम है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जो हम जो ये मौजू है ये किताबों तक महदूद नहीं।
0: सही बात है,
1: बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का आईना है।
0: क्या बात है,
1: इखलाकियात। अगर हम इंसान की असल पहचान की बात करें,
0: जी जी,
1: इंसान की असल पहचान जो है लिबास से नहीं, माल और दौलत से नहीं, बल्कि इखलाक से होता है।
0: क्या बात है।
1: तो रिफत, अगर रवैया की बात करें, नरमी से बात करना, दूसरों का एहतराम करना, ये वो खूबसूरती है जो दिलों में जगह बना लेती है।
0: बिल्कुल,
1: इखलाक इंसान की शख्सियत का वो हसीन पहलू है जो उससे दूसरों के दिलों में इज्जत और मकबूलियत अदा करता है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही।
1: तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, अच्छा इखलाक नरमी से बात करने का अभी मैंने कहा, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। नरमी से तो हम बात करते हैं
0: जी,
1: या हम चाहते हैं आगे वाला हमारे साथ नरमी से बात करे, क्योंकि हमारी नजर जो पड़ती है, हम जब किसी की बात सुनते हैं तो उसी से पता चलता है इंसान क्या है।
0: सही बात,
1: क्योंकि तब तक हमें पता नहीं होता है इंसान क्या है। जब आपने बात की तो मेरी समझ में आया कि आपकी तरबियत क्या है।
0: क्या बात है।
1: तो नरमी से बात करने का नाम इखलाक नहीं, बल्कि दूसरों का एहतराम करना, सच बोलना, मदद का जज्बा रखना और मोहब्बत से पेश आना भी अच्छा इखलाक है।
0: सही बात,
1: इखलाक में शामिल ये चीजें भी हैं। एक खुश इखलाक शख्स की अगर हम बात करें रिफत, न सिर्फ अपने घर और दोस्तों में पसंद किया जाता है, बल्कि समाज में भी अच्छी पहचान बना लेता है ऐसा शख्स।
0: सही बात है।
1: अच्छे अल्फाज और बेहतरीन रवैये की बात अगर हम करें तो वो कुव्वत रखते हैं जो बिगड़ी हुई बात को भी संवार सकते हैं।
0: क्या बात है।
1: इसलिए हम सबको चाहिए हम अपने इखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, इखलाक से ही सब कुछ पता चलता है। हमें नहीं पता आप किस घर से हैं,
0: बिल्कुल,
1: आपकी जात पात क्या है, लेकिन जब आप बात करते हो,
0: आपका लहजा, आपका
1: लहजा, आपका रवैया, यही आपकी पहचान बना लेता है।
0: गुफ्तगू में इखलाक, जब हम इखलाक की बात, तो गुफ्तगू में भी एक नरमी आ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक लहजा, नरम लहजा जो बहुत ही पसंद आता है लोगों को।
1: बिल्कुल, उसी से तो पता चलता है इखलाक क्या है। तो क्योंकि अच्छे इखलाक ही इंसान की اصل پہچان ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا اچھی گفتگو, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ گفتگو بات چلی تو اچھی گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اگر ہم اپنے الفاظ میں مٹھاس رکھیں, دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کا احترام دیں, تو نہ صرف رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ سماج میں محبت بھی بڑھتی ہے, کیونکہ ہمارے لیے سماج بھی بہت اہم ہے.
0: صحیح بات ہے,
1: جو بھی ہم کرتے ہیں تو سماج کے لیے کرتے ہیں. تو اگر ہمارے

0: माहौल को देनी है। क्या हमारे घर का माहौल सही है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। दौलत तो सबसे बड़ी दौलत मेरे हिसाब से बच्चों की अच्छी तरबियत है। अगर आपका बच्चा आपके पास बहुत ही सोलह हो, जैसे आज हमें ईद कुर्बान है, तो कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि हमें वैसे बच्चे पैदा करने हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल
1: है। बिल्कुल।
0: क्या हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो गर्दन हमारे हुकुम पे गर्दन अपनी झुकाएंगे?
2: क्या बात,
0: बहुत बढ़िया तरबियत दी है जो हमारे इस्लाम में है। अगर हम हर मजहब की बात करें, हर मजहब, हर इखलाकी किताब, हर जो मतलब हम दरसो तदरीस की किताबों को अगर हम देखेंगे, कोई भी मजहब, कोई भी किताब हमें गलत तरबियत नहीं देती है। लेकिन अगर हम वो पढ़ते हैं तो हम तरबियत देने में क्यों पीछे रह गए? हमारी कमियां कहाँ पे रह गई? क्या हमारे बच्चे इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए कि वो हमारी बात सुनते नहीं है? आजकल बच्चे खुदरशन ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, उनको पता ही नहीं होता। हमारे मोहल्ले में रिसेंटली एक इंसिडेंट हो गया, बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है, मतलब वो पीछे से ही लोगों को हमला करने आता है। ये चीज हमें रोकनी है, हमें समाज को, पूरे सिस्टम को रोकना है। अगर किसी के घर में ऐसी बात है, हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसके पेरेंट्स को समझाना है कि आपके बच्चे में ये कमी है। उस पेरेंट को हमें पूरी तरह से ना वो क्या बोलते हैं, उसको कोऑपरेशन देनी है, उसको समझाना है कि हम आपके साथ है, आपके बच्चे में ये कमी आ गई, लेकिन हमें मिलके इसको दूर करना है।
2: सही बात है, बिल्कुल।
0: यू गॉट मी?
1: जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें सिर्फ पेरेंट का जो है रोल होना चाहिए हर तरीके से। हमें अपने
0: जैसे आजकल देखिए, मैं अपना बोलूंगी कि हम जब स्कूल जाते थे, मैं एज ए टीचर भी बात करूंगी, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे मेरे अपने बचपन में, तो हमें टीचर का एक खौफ होता था। टीचर हमें मारता नहीं था, खाता नहीं था, मगर एक डर था, एक खौफ था। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो टीचर के सामने ही बच्चों के सामने, मतलब टीचर भी उधर ही होता, बच्चों को बोलते हैं कि हे क्या करी थे,
1: बिल्कुल खौफ नहीं रखा है,
0: मतलब टीचर से वो इख्तियार ही
1: छीन लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भी पेरेंट्स का ही, अगर बच्चे को टीचर ने किसी बात पे डांटा, किसी बात के लिए रोका, दूसरे दिन पेरेंट आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई आपने अच्छा किया, आप इसके मेरे बाद आप इसके वालिदैन हैं।
1: सही कहा आपने, बहुत ही सही, बहुत ही दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि घूम फिर के यही कहेंगे कि ये पेरेंट्स पे ही बात आती है।
2: बिल्कुल,
0: हमारे मुआशरे में जब मेरा बच्चा अच्छा होगा, शायद आपका बच्चा अच्छा होगा, फिर तीसरे का बच्चा अच्छा होगा। और हमें ये वो बोलते थे ना इंग्लिश में, वो टू स्पेयर द रॉड टू स्पॉइल द किड, बच्चे को कभी कभार डांट फटकार भी पड़नी चाहिए। या कहीं पे बच्चा अगर आपको कोई चीज मांग रहा है, आपको अगर अवेलेबिलिटी है, अगर आप वो दे सकते हैं, लेकिन कहीं पे रोक जाइए।
1: बिल्कुल, बच्चे को ना भी ना सुनना भी सिखाना, बिल्कुल बिल्कुल
0: ना भी समझ लीजिए,
1: जी जी
0: जी। या बच्चे को उतनी ज्यादा फैसिलिटीज मत प्रोवाइड कीजिए कि वो कहीं भी जाने के लिए बोले तो और आप बोलोगे कि जाओ। अगर वो जा रहा है कहीं पे, आपको पूरा वॉच रखना चाहिए, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, क्या कंपनी है इसकी।
1: बिल्कुल, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना है, बहुत ही जरूरी है। तो अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। तो यही कहेंगे कि जो आपने बातें कही, सभी अभी सुन रहे हमारे लिसनर्स, तो हम सब जो चाहिए हमें इस पर अमल करना है और अपने माशरे को दुरुस्त करना है, पहले अपने घरों को, फिर वही बात आती है माशरे की। तो आपका बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: रिश्तों को, अपने रिश्तों बिल्कुल को अच्छा रखना,
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपका अभी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सभी इस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.1 मीटर और आप समाप्त कर रहे हैं शो लाइव इंटरेक्टिव शो। जी हाँ, मैं हूँ आपकी मेजबान शाहिन ऋषि और मेरे साथ हैं रिफत आरा। तो बात कर रहे थे हम इखलाक की, तो यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो वही अच्छा इखलाक जो है एक और खूबसूरत सिफात की तरफ ले जाता है, वो है सब्र। क्यों रिफत जी?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, सब्र छु साख चीज यूस ऐसे तरह की हैं जवात प्रावनावान जो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही वो होता है सब्र सु चीज उस ऐसे हर कुने मुश्किलस मंज मुकाबल करन हिचनावान छ।
1: सही छु, बिल्कुल सही छ वनान यम सत सब्र छु ना यवान तम सच इंसान पेस पर यूस ते तकलीफ आसे इंसान छु पर ना हम त सान सु जेलन
0: करन ते छु ती
1: त सब्र सतन छु आख यूजन निजाम छु ना सु मुनजम निजाम बना
0: सही रोजान सही डंगस मज।
1: अगर इस घर छ कात करब अगर इस घर अस मज नफर चोर छु चोरन छु चोर मिजाज।
0: बिल्कुल
1: छ ना, का छु आसान तेज का छु आसान नरम तबीयत का छु आसान बड़ खुश गुफ्तार इंसान यम से कात करन खुश करा मगर कंस अगर योर कात वनो सु तोर चोर जवाब वनान।
0: बिल्कुल
1: मगर यम साथन इमस नफरस पर सब्र छ ना करान आख वक्त छु वातान ये छु आत पर सोचने कोशिश करान ये है कोशिश करान कि अगर बो अमिस योर तेजर छुस करान इस में और नरमी सान कत करान।
0: बिल्कुल
1: ले हको पनस बस सतन ते इस करित कि अगर सु तेजर छु करान योर कर बस नरम गुफ
0: गसान छु यम चीज करान मन
1: पात विशु ते अख वक्त वाते दपान छु ना सब्र छु आसान सब्र को फल छु बुड आसान ये सब्र का फल आपको मिलता है मगर के हस टाइमस अगर तु ये चीज बर्दाश्त करियो आप पर सब्र करियो वजू अल्लाह ताला कूता बोर तो छु सुकूता असल अजर छु देवा।
0: बिल्कुल अतन वन भी के तो कर व बर्जन हंस कात पे जी पर दपान छु अतस मन छु अंग जे पांच इम थन छन शीशे की इथे ने गरस मन छु बर्ज दा हसा पांच आसान यम ति छन हेवी आसान के मगर यम साथ तोर छु का नफर यम साथ तय कर कत यम साथ नफर का छु आसान यु छु आसान अकिस कत चोर कत वनान मगर इसे योर नफर छु यु छु अर्थ सब्रस काम है वन यु से सब्र ये डिस्कस करा सी छु

0: बिगड़ सकता है, तो यकीनन हर एक चीज अपनी जगह सही नहीं रहती है।
1: सही बात है।
0: तो जाहिर सी बात है, एक इंसान में सब्र होना चाहिए, नदामत होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ नदामत आ ही जाती है। जिसमें सब्र हो,
1: जिसमें सब्र ना हो तो उसमें नफरतें पैदा हो जाती
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: उसमें नफरत हसद पैदा हो जाता है। अगर हम हसद की बात करें, वैसे जान गयो अगर इंसान नदामत है।
1: सही बात है।
0: तिकाज यम सात सब्र सत नदामत त मगर यम सात नब्र यम सात नदामत तो हसद जरूरी तेल। हसद कूत गलत।
1: सही बात।
0: यह हसद बोलने में ही कितना गलत लगता है। जब हम दूसरों की खुशी में या कामयाबी में जलन महसूस करते हैं, शायद उसी का नाम हसद है।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन जिस इंसान के दिल में हसद है, उसका दिल चैन से भी नहीं होता है।
1: सही बात है। सही
0: हसद
1: बात
0: एक है। ऐसा मनफी जज्बा है रिफत, जो इंसान के दिल का सुकून छीन लेता है। सुच आसान काल पगा इससे कि अथ हसद किस नारस मजबान दाजान आसान कि ये कहते ओन ये क्या छूता कामयाब एम कित कन कोर ये अगर ये तरक्की पे अम यह तरक्की कित कन कर मगर अम सुन दिमाग अम साथ दिवान ये तरक्की करन पन्नी मेहनत सहित।
1: सही बात है।
0: ये वोत अथ मंजिलस पे पन्नी मेहनत सहित अगर अम सिंदिस दिलस मन हसद यह सिर्फ अमे खतरे ये हसद करान कि अम्स छन अम सिंस खुशी बर्दाश्त गछान के। लेकिन ऐसे हासिद इंसान को चाहिए अपने अंदर जान के देखे।
1: सही बात है।
0: वही कोशिश करे जिससे इसको जलन होती है, जिसकी खुशी से इसको जलन होती है, जिसके मतलब जो तरक्की कर रहा है उसकी वजह से इसको जलन होती है, खुद को वहां तक पहुंचाए मेहनत करके, कोशिश करके।
1: बिल्कुल, हमें मेहनत ही करनी चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के,
0: उस लेवल तक पहुंचे जहां इसको इसका हसद हो गया, जहां इसको जलन हो गई, खुद को वहां पहुंचा कर देखे।
1: क्या बात है।
0: एक हासिद इंसान की क्या हम बात करें, उसका जो है दिल दिमाग दिन रात ऐसे ही हसद के जो है आग में जल रहा होता
1: है।
0: दजुन तमिस आसान दिल दिमाग तमिस दिमागस मज अख्ते पॉजिटिव चीज इवान बल्कि तमिस छी इवान नेगेटिव चीज मगर अमिस इंसानस छुन जहीं ते दिमागस मज इवान तलब बत करहा मेहनत तलब बत वाता मेहनत करित उतन ताकि ताकि बत वुचहा अम कूचा मेहनत छु
1: करमस
0: اتن ات مقام تان واتنان واتان کوچا چھ ام ات منزلس تان واتان واتان کوچا چھ ام محنت کرمت امہ بجائے کہ حسد تھو اس کنسن دلس من بلکہ اچھو تن توتن واتن خاطر محنت کریں محنت کریں تو سن منزل تلاش کرے تاونچ کوشش کرے پن محنت سے نہ کہ حس بے سن کت کرے بے سن حسد کرے
1: بے چھ انسان یہ مو چیز اس تم گناہ کر تے سبدان اگر اس کنسن حسد تھو تو بل ہنگ تہ منگ انسان گنہن مز گیر گھان یت پہ تہ انسانس لکٹ بڑ گناہ گھان روزان تو کوشش یہ کریں کہ انسان گھس نم گنہن مز پھسو نس کی
0: اتن کر بہ اخ چیز ایڈ کہ اس یہ حاصل چھ نا آسان یہ چھ قرارس مز آسان کہیں یہ بالکل آسان امس چھ آسان پتہ بہ کیا چھس کران امس نہ چھ آسان دلک سکون نہ چھس آسان قرار
1: اور جبکہ دیکھیے کہ اس دور میں سکون ہونا بہت ہی
0: ضروری ہے لیکن ایک حاسد کے لیے یہی کہیں گے کہ آپ جو یہ اپنا قرار جو سکون کھو رہے ہو اس حسد کی آگ میں اس سے بیٹر ہے آپ محنت کر کے اس انسان کے مقام تک پہنچے جس کے لیے آپ دل میں حسد پالے ہوئے ہیں
1: کیا بات ہے بہت بڑھیا

0: तो शाहीन घड़ी कुछ इशारा कर रही है
1: जी बिल्कुल, इजाजत लेना
0: सिलसिला बिल्कुल जी, हमें यहाँ रोकना पड़ेगा
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी के लिए हम इजाजत लेंगे अपने सामीन को और बोलेंगे कि जो आप ये ट्रैक एंजॉय कर रहे हैं इसको एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाजत।
0: बिल्कुल इजाजत तो वैसे मुझे देनी है क्योंकि
1: मैं अपने दोस्तों को यही कहूंगी कि जिसके मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा 4 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी खिदमत के लिए हूँ इस ट्रांसमिशन में। फिलहाल रिफत जी इजाजत लेंगी
0: बिल्कुल, इस लाइव शो में हमने आपसे इजाजत मांगी शाहीन जी ने, लेकिन आपके साथ रहेंगे बिल्कुल, आप घबराइए मत। शाहीन जी की जो परफॉर्मेंस है वो आप सुनेंगे आज, अच्छे अच्छे नगमे अच्छी अच्छी बातें आपके साथ होंगी। फिलहाल आपने शाहीन मेरा साथ दिया इस ट्रांसमिशन में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके
1: और बहुत शुक्रिया।
0: मौका मिला तो इंशाल्लाह आगे भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: फिलहाल जो प्रोग्राम का वक्त है मुकम्मल हुआ चाहता है, तो मैं ले लूँ इजाजत इससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत शुक्रिया आपका और सामीन आपका भी। मैं बस यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, भरपूर ख्याल, हमें जिंदगानी रही तो फिर मुलाकात होंगे आपसे। तब तक के लिए आपका हमारा हम सबका अल्लाह हामी व नासिर।

var aflak, çok tacılı var. Kayma.

0: سامین تیسو بوزان چھکر طرف، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیو ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر 12 بجنے والے ہیں. ابھی تھوڑی لمحات میں آپ کو آکاش وانی دلی لیے چلیں گے، جہاں سے آپ ہندی اور انگریزی اور ہندی میں خبریں سماعت کریں گے. بس ذرا سا
1: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी. गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है.
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है. ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी.
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई. श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे. ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं.

दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि

0: को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and has said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And you felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal engaged with over 50 business and industry leaders at the roundtable hosted by the Consulate General of India in New York in collaboration with the US-India Strategic Partnership Forum. In a social media post, Mr. Goyal said during the roundtable he highlighted India's strong growth story, reform-driven business environment and expanding opportunities for global investors under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He further discussed ways to deepen India-US trade, investment, innovation and supply chain partnerships for shared prosperity. Vice President CP Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary.

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE हेडक्वार्टर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में उन्होंने 12वीं जमात के इम्तहान के तरीकेकार और नतज का जायजा लिया। मीटिंग में तलबा को बरवक्त शिफाफ और बेहतर सहूलियात फराहम करने, नीज नतज के बाद मामलत के निजाम को मजबूत बनाने और इम्तहानी अमल को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। वजीर तालीम ने कहा कि तलबा के मफादात का तहफ्फुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और किसी भी कस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर माया तिसाफी ने कल लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात में जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे के हवाले से कई मामलों पर तबादले ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर को मनुष्यार्थ के लाने से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं और मनुष्यार्थ के ढांचे को खत्म करने, नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कालीधर नौशहरा में जरेतामेर सिंगल टनल मंसूबे का मुआयना किया और काम की रफ्तार और मैयार का जायजा दिया। उन्होंने मंसूबे में ताखीर और तामीराती मैयार पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतलका एजेंसियों को मैयारी असूलों और हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। नायब वजीर आला ने कहा कि मंसूबे की बरवक्त तकमील आवाम की सहूलत और राजौरी पुंछ जम्मू और नौशहरा के दरमियान बेहतर राबते के लिए निहायत अहम है। नायब वजीर आला ने दौरे के दौरान इलाके में दीगर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बाग मालिकान और ताजरों के लिए रेलवे एक बार फिर तेज, महफूज और काबिल एतमाद जरिए नकल हमल साबित हो रहा है। शिमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के मुताबिक रवां चेरी सीजन के दौरान अब तक तकरीबन 43 टन ताजा चेरी रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए मुल्क

0: मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं,

0: वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
1: जी।
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
1: जी।
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी।

0: जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
1: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
2: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
2: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
2: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
2: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
2: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: समीन, आप समाप्त कर रहे थे तालीमी प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सामीन, आइए नादिया कवाली सुनते हैं। फनकार हैं अजीज अहमद खान कव्वाल और साथी, इनसे आप कला में दाग सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 1:50 होने वाले हैं। चंद ही लम्हों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां आप उर्दू और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे।
1: मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। IMD ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज़्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकेन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आज़ादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरखास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशा होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। DD न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुँची है।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र गलती से पाक इम्तिहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तिहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। भारत ने माहौल के लिए साजगार तवानाई के अपने सफर में एक तारीखी संग मील तय किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब PM सूर्य घर स्कीम के तहत 40 लाख घरों को छत पर नस्ब किए जाने वाले शमसी तवानाई के निज़ाम की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक एक पहल से भी ज़्यादा इस यकसर तब्दीली लाने वाली स्कीम से शहरी महज तवानाई का खर्च करने

लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वो बिजली के पैदाकार भी बन गए हैं। इस स्कीम से कुनबे अपने बिजली के अखराजात में कमी कर सकेंगे, सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे और बिजली के अखराजात पूरी तरह ख़त्म कर सकेंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने ख़ास तौर पर कहा कि हर घर में जब शमसी तवानाई होगी तो मुल्क तवानाई की यकीनी फराहमी, माहौलियाती इस्तेहकाम और ख़ुद कफ़ील विकसित भारत के तसव्वुर को पूरा करने की जानिब बढ़ेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरमी नाला और क्रीक इलाके का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सामने के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मीशत के तौर पर उभरा है और असलाहत और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कृष्णा जिले में मल्लावली सनती पार्क में मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। जनाब सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सनत तेज़ी से वसत पा रही है और उन्होंने भारतीय दस्तकारों को वसी आलमी मंडी तक रसाई फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ़ ने कहा कि पैदावार से वाबस्ता तरगीबात की स्कीम पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही है और भारतीय ब्रांड्स को फ़रोग दे रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब कर रही है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तिजारत व सनत के 50 से ज़्यादा सरबराहों के साथ एक गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसलेट जनरल और भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेज़बानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की असलाहत पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसीतर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए मौके वसी करने, असलाहत पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तई भारत के अज़म को दोहराया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अक़वामे मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली UN अमन फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली बहादुर मर्द ख़वातीन फ़ौजियों की सताइश की जो आलमी सतह पर अमन व सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़म पर कायम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमा IMD ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज़्यादा दिन की पेशगोई करते हुए IMD ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शिमाल मगरिब वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत में इस साल जून और सितंबर के दरमियान मामूल से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेर तामीर पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोरा कंद्र से कंदौर गांव को मिलाता है जो बेतवा दरिया पर तामीर किया जा रहा है। यह हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा सरकार इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम मजीद आगे बढ़ेगा। 2026 की एशियन Under-20 एथलीटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर्स मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने
5000 मीटर्स के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.7

जान दोस्तों, आवाज़ ही इंसान की पहचान होती है, जिससे इंसान को पहचाना जाता है। जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता जो है, ये आवाज़ से ही है, क्योंकि आप हमारी आवाज़ सुनते हैं और आप पहचान जाते हैं कि आज ड्यूटी पे कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है जो आवाज़ का रिश्ता है। आप हमें ऐसे नहीं जानते हैं बल्कि आवाज़ से जानते हैं। तो यही रिश्ता जो है, ये बहुत ही ख़ास होता है, जैसे कि हमारा और आपका बन गया है। तो अभी कुछ जो है शेयर करना चाहूँगी, कुछ मुफीद बातें जो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो गाड़ी चलाते वक्त जो है सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। आपकी हिफाजत आपके घर वालों की खुशी है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए और महफूज सफ़र कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक लम्हे की लापरवाही जो है किसी बड़ी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जैसे कि हम ये यहाँ पे कहेंगे कि आजकल ईद का माहौल है, आना जाना रहता है और सड़क पर जो है बहुत ही ट्रैफिक होता है। ऐसे में आप बहुत ख्याल रखिए, आप अपना, खासकर अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो इस उम्मीद से आपके घर वाले इजाज़त देते हैं कि शाम को हमारे बच्चे जो है या जो भी घर से निकलते हैं, वो चाहते हैं कि सलामती से वो घर आए। इसलिए उनकी जो ये उम्मीद है वो आप बराबर पूरी कीजिए, क्योंकि यही हिफाजत है। जब आप घर से निकलते हैं, चाहे आप बाइक चलाते हैं, चाहे आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी चलाते हैं तो बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, और ख़ासकर स्पीड का ध्यान रखिए। और टेकिंग ना कीजिए और स्पीड लिमिट में रखिए, ताकि आपके घर वाले आप की जो आपसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी हो जाए, और आप सलामती से सफ़र भी करें और जहाँ जाना भी होगा वहाँ भी जाएं और घर वापस लौट कर भी आएं।

जी हाँ दोस्तों, फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। तो बात चली ईद की, तो आजकल जो है ईद का माहौल चल रहा है, तो सफाई बहुत ही ज़रूरी है। अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें, कचरा डस्टबिन में डालें और अपना जो है मोहल्ला साफ रखें, क्योंकि सेहतमंद जो है, अगर हम सफाई रखेंगे तो सेहतमंद ज़रूर रहेंगे। साफ माहौल, सेहतमंद ज़िंदगी। जी हाँ, सेहतमंद रहने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए, वक्त पर खाना खाइए और रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए साफ माहौल को, एक्सरसाइज को और वक्त पे खाने पीने को। तो सुनते रहिए जो है आकाशवाणी श्रीनगर की नशरियात। तो अगला नगमा आप सबके लिए।

जान दोस्तों, फिल्मी नग में आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे थे। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन, जबजत 3 मिनट सबद वेलियो छकृत रूफ बोजो सदाकार छ गुलाम अहमद सोफी तसैथी यमनिश बोजो तुविंग कला में न्याम सब।

just raivis astuman jarasai subozia jan bozia

Намазфор, Кабасай, Субодя, Янгодя.

拿出我一点汤姆塞苏伯家杨伯家多有

شاه چه سلطان سوز وایان گوشو پنیو بوزن مسای سبوزیا یان بوزیا

талаю судоросей. Субозя, я не боюсь.

0: розтурнув хоромош, учуміла нягаят.
1: Калагає судир сей, собою

Bazaz Saint William Shabazz Le

yaştayınca staymış. Astmalı yarasay. Subozya.

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम लेकर मैं शाहिना ऋषि आपकी खिदमत में हाजिर। सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हुए मुल्क के अमन अमान की हिफाजत में मसरूफ हमारे अजीज फौजी भाइयों को हम दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। दूरियों के दरमियान भी कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ नगमे दिल के करीब रहते हैं। इसी एहसास को साथ लेकर हम लाए हैं चंद बेहतरीन फिल्मी नगमे, जो उम्मीद, मोहब्बत, यादों और जिंदगी की खूबसूरत रंगों को समेटे हुए हैं। तो फौजी भाइयों, चलिए आगाज में आप तक पहुंचाते हैं प्यारा से नगमा। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये जो नगमा आप तक पहुंचाने वाली हूँ। ये है दीवाना फिल्म का, कुमार सानू की आवाज़ में।

मगर फौज भाइयों, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बल्कि हम आपके लिए खूबसूरत से नगमे प्ले करते रहेंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तो खूबसूरत एहसास कभी अल्फाज के मोहताज नहीं होते, कुछ जज्बात बस दिल में छुप कर रह जाते हैं और कुछ नगमे उन जज्बातों को जुबान दे देते हैं। घर से दूर रहते हुए यादें अक्सर हम सफ़र बन जाती हैं और जब हम सफ़र बन जाते हैं तो दिल से ये आवाज़ निकलती है।

जी हाँ, द डर्टी पिक्चर से आपने इस नगमे को सुना, तो इस नगमे के लिए यही कहेंगे कि ये जो मूवी है इसमें इस नगमे को जो अभी आपने एंजॉय किया, बहुत ही पसंद किया गया इस नगमे को, और मूवी जो है इसमें लीड रोल में इमरान हाशमी, विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह नज़र आते हैं, और आप यही कहेंगे कि ये बहुत ही इस गाने की वजह से ये जो पिक्चर है बहुत ही हिट रही है, और उम्मीद करती हूँ सुनिधि चौहान की आवाज़ में आपने इस नगमे को ज़रूर पसंद किया होगा। तो यहाँ पे एक बात और कहूँगी कि इंतज़ार एक एहसास जो मोहब्बत को और भी गहरा बना देता है, घर वालों की दुआएं, अपनों की यादें और मिलने की उम्मीद, ये तो जज्बा है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है।

जहां फजू भाई हो, नदीम श्रवण की मौसीकी में आपने समीर के बोल सुने। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। सैनिक फिल्म का नगमा आपने समाप्त किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और साथ ही ये कहना चाहूँगी कि आप जो ये फौजी भाइयों का प्रोग्राम आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। तो ज़िंदगी की राहों में कुछ यादें फूलों की खुशबू की तरह हमारे साथ चलती रहती हैं। कभी बचपन, कभी अपने लोग और कभी किसी अपने की मुस्कुराहट। एक और प्यारा सा नगमा आप सबके लिए।

0: अनारी फिल्म का नगमा आपने समाप्त किया, समीर के बोलों को आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।
1: सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कुछ नगमे जो हैं बिल्कुल हमारी पुरानी डायरी के जैसी होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है वो हमारे लिए, कितनी बहुत ही कीमती होती है हमारे लिए। तो

हर पेज पे एक याद, एक कहानी, कभी स्कूल डेज, कभी पहला प्यार, कभी वो वक्त जब सब सिंपल था, वो सब हमें याद आता है। तो इसी तरह जो कुछ नगमे हैं हमें बहुत ही दिल के करीब होते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि अपने फौजी भाइयों से कि अगर आप इस वक्त किसी को याद कर रहे हैं तो ये गाना उनके नाम।

जी हाँ, चलते चलते फिल्म का नगमा आपने समाप्त किया अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। तो फौजी भाइयों, यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अब जो है बात दिल की धड़कनों तक पहुँची है। कुछ रिश्तों की अहमियत लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला नगमा जो है बहुत ही प्यारा नगमा है, मुझे तो खुद बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। ये गुलामी फिल्म का नगमा है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। एंजॉय कीजिए।

जी हाँ, आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं फौजी भाइयों के लिए आकाशवाणी श्रीनगर से। तो वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और ज़िंदगी भी नए रंग जो है दिखाती रहती है, लेकिन हौसला और उम्मीद जो है इंसान को मजबूत बनाए रखते हैं। इस खूबसूरत पैगाम के साथ ये अगला नगमा।

आपने सोनू निगम की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल सुने, फिल्म कल हो ना हो। तो इसी के साथ ही आज का जो है फौजी भाइयों का प्रोग्राम समाप्त होता है। जाते जाते यही कहेंगे कि सरहदों पर आपकी जागती आंखें और बेमिसाल हिम्मत हम सब के लिए फख्र का सबब हैं। घर से दूर रहकर भी आप वतन की हिफाजत को अपना फ़र्ज़ समझकर अंजाम देते हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत सलाम और बहुत नेक दुआएं। तो इसी के साथ ही आज के लिए हमें दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होंगे इसी प्रोग्राम में। जब तक के लिए जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। दोस्तों 3:50 हो रहे हैं, अभी चंद लम्हों में आप तक पहुंचेंगे उर्दू खबरें। जी हाँ, उर्दू खबरों का वेट कीजिए, बस ज़रा सा इंतज़ार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुकदमात में फैसला महफूज करने के बाद 3 माह के अंदर फैसला सुनाने की सभी हाईकोर्टों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। इम्तिहानी माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुस्तहिक तालिबे इल्मों के मफादात का तहफ्फुज करने की मरकज की यकीन दहानी। दिल्ली से कटरा तक मुजवजा NE5 एक्सप्रेस वे को कौमी शाहराहों के नेटवर्क में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी। और PM सूर्य घर स्कीम के तहत अब तक 40 लाख घर रूफ टॉप सोलर से बाइख्तियार। अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के तमाम हाईकोर्टों को हिदायत दी है कि वो मुकदमात में फैसला महफूज करने के बाद 3 माह के अंदर अपना फैसला सुनाए। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि फैसलों की फराहमी में ताखीर से फरीकीन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ज़ाती आज़ादी से मुतल्लिक मुकदमात में फौरी फैसलों की जरूरत पर जोर देते हुए चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरख्वास्तों पर अहकामात उसी दिन सुनाए जाएं और अगर फैसला महफूज रखा जाए तो उसे अगले दिन या अपलोड किया जाए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का हालिया मामला एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जो नहीं होना चाहिए था। DD न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में होने वाले नए इम्तिहान का अमल मुनासिब और मुनज्जम अंदाज में बगैर किसी खामी के मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए वजीर तालीम ने सभी मुतलकीन से तआवुन की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालिबे इल्मों के खदशात को बखूबी समझती है और ये भी तस्लीम करती है कि उनका एतमाद मजरूह हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने सख्त फैसला इसलिए लिया ताकि किसी भी मुस्तहिक तालिबे इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहानी माफिया के हाथों बेजाब्तगियों का शिकार न हो। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली से कटरा तक मुजवजा NE5 एक्सप्रेस वे को कौमी शाहराहों के नेटवर्क में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह तेज रफ्तार राहदारी दिल्ली हरियाणा पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान राबते को बेहतर बनाएगी। शाहराहों और सड़क राबतों के वजारत के मुताबिक ये एक्सप्रेस वे दिल्ली के रानीखेड़ा से शुरू होकर हरियाणा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए कटरा के करीब कौमी शाहराह 144 से मिलेगा। मनसूबे से सफर में आसानी, तजारती सरगर्मी और इलाकाई तरक्की को फरोग मिलने की तवक्को है। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर माया टेसाफी ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों शख्सियात ने देरपा सियाहत, बागबानी और दीगर मुंसलिक सेक्टरों समेत बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तफसीली तबादले ख्याल किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कालीधर नौशहरा में ज़ेर तामीर सिंगल टनल मंसूबे का मुआयना किया और काम की रफ्तार और मैार का जायजा लिया। उन्होंने मंसूबे में ताखीर और तामीराती मैार पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतलक एजेंसियों को मैारी असूलों और हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मंसूबे की बरवक्त तकमील अवाम की सहूलत और रजौरी पुंछ जम्मू और नौशहरा के दरमियान बेहतर रबते के लिए नहायत अहम है। नायब वज़ीर-ए-आला ने दौरे के दौरान इलाके में कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को खत्म करने, इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में इस सामाजिक बुराई से बचने के इकदाम के बारे में PM श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हुमहामा बड़गाम के प्रिंसिपल शब्बीर हुसैन राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: नशा एक ऐसी खामोश तबाही है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों की खुशियां और माशरे का सुकून छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करें और नौजवान

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 4 बजने वाले हैं। एक वक्फे के बाद समाप्त करें पहाड़ी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम केनके मैं तुस्ता मेज़बान जहांगीर अहमद खान अपने तमाम सुनने वालों को प्यार खुलूस ते ताज़ीम नाल अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करदा ते अज दी इस महफिल विच सारयां दा खैर मकदम करदा। सामिन अज जुमतुल मुबारक है। हसबे दस्तूर ते हसबे रिवायत अपनी अज दी महफिल दी शुरुआत नाते बहुजूर सरवर कौनैन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ते नात ख्वाइन असगर अली कुरैशी।

चमन बिच फूलां दे नजारे ना होंदे। खालक सुनो ए दुनिया बनाई ना होंदी। खालक सुनो ए दुनिया बनाई ना होंदी।

ਹਸਦ ਵੀ ਨਾ ਮੁਕਦਾ ਉਲਫਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

0: समीन अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हुए हैं। समाप्त कीजिए पहाड़ी में खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी।

0: चार बजकर 20 मिनट हो गए। पहाड़ी खबरनामा किनका में हाँ लियाकत अब्बास, पहले पेश इन कुछ खास खबरें दिया सुर्खियां। मुकदमे भी फैसला महफूज करने के 3 महीने के अंदर फैसले सुनाने दे सारे हाई कोर्टा को सुप्रीम कोर्ट सुन दी हिदायत। इम्तहानी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तो मुस्तक तालब इलम के मफादात तहफ़ करने की मरकज सुन दी यकीन दहानी। दिल्ली से कटरा तोड़ी मुजवजा NE5 एक्सप्रेस वे को कौमी शाहराहों के नैटवर्क भी शामिल करने का नोटिफिकेशन किए गया जारी। और PM सूर्या कार स्कीम के तहत उन्होंने तोड़ी 40 लाख कारा का सोलर लाका बनाया गया बाइख्तियार। हूँ पेश है खबर की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सारे हाई कोर्टों को हिदायत दी थी कि वह मुकदमे भी फैसला महफूज करने के 3 महीने के अंदर अपने फैसले सुनावन। अदालती उजमा सुन यह भी आखे जे फैसले की फरहमी में चिर नाल फरीकैन को नाकाबले तलाफी नुकसान हो सकता है। जाती आज़ादी से मुतलक मुकदमे में जल्दी फैसले की जरूरत जोर देंद चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्या कांत मुश्तमिल एक बेंच सुन आखे जे जमानत दरखास्तों का अहकाम उसी ध्याड़े सुनाए जुलन और अगर फैसला महफूज रखे गए तो इसको अगले ध्याड़े सुनाया और अपलोड किए जुलै। तालीम के मरकजी वजीर धर्मिंदर प्रधान सुन आखे जे पेपर लीक का हाल ही बिच होया मामला बहु अफसोसनाक वाका सा जेड़ा ना होना चाहिए सा। DD न्यूज़ ना खसूसी इंटरव्यू बिच उन्होंने सुन आखिया जे आने वाले ध्याड़ियों बिच होने वाले नवे इम्तिहान का अमल मुनासब तो मुनासम अंदाज बिच बगैर किसी हामी के मुकम्मल किए गए। इस वास्ते तालीम के मरकजी वजीर सुन सारे मुतलकीन की तावन करने की अपील की। उन्होंने सुन आखिया जे हुकूमत तालब इलमों के खदशों को चंगी तरह समझती है और यह भी मनती है जे उनका भरोसा टुटिया है। उन्होंने सुन यह भी आखिया जे हुकूमत सख्त फैसला इस वास्ते किया ताकि किसी भी मुस्तक तालब इलमों का मुस्तकबिल इम्तिहानी माफिया के हथा बेजाबतियों का शिकार न हो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन नीट का सवालिया परचा लीक होने के मामले को बहु तफीशनाक करार दिता। नामा निगारन नाल गल करदिया उन्होंने सुन इस मामले को बारीक बीनी नाल तहकीक करने की मांग की थी।
1: तो 5 रियासतों में जिसमें हुआ इसे तहकीकात जबरदस्त होनी चाहिए, जिन्होंने किया है उनको सजा देनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे सफर करते हैं, बच्चों को फिर से इम्तिहान देना पड़े और इस गर्मी में कहीं 45 डिग्री है कहीं 48 डिग्री है, अल्लाह ही रहम करे।
0: मरकजी हुकूमत सुन दिल्ली से कटरा तोड़ी मुजवजा NE5 एक्सप्रेस वे को मुल्क सड़कों के नेटवर्क भी शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। तेज़ रफ्तार राहदारी दिल्ली हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के बिशकार रबते को बेहतर मुलासी शाहराहों के सड़क रबत्या की वजारत के मुताबिक एक्सप्रेस वे दिल्ली के रानी खेरा थी शुरू होकर हरियाणा पंजाब के मुझ सारे इलाकों थी लंघदियाँ कटरा के नेड़े कौमी शाहरा NH 144 नाल मिलसी। मनसूबे थी सफर बिच आसानी तजारती सरगर्मियाँ और इलाके की तरक्की को बाधा मिलने की उम्मीद है। भारत भी स्विट्जरलैंड की सफीर माया तुसाफी सुन अज श्रीनगर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मुलाकात की थी। दोवे शख्सियतों सुन पायदार सियाहत बागबानी के दुनिया मुझ सारे सैक्टर बिच आपसी दिलचस्पी ले लड़ सारे मामलों का तफसील नाल गल की थी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सुन काली दर नौशहरा भी बढ़ाए जुल रहे सिंगल टंडल मनसूबे का मुआयना किया तो कम की रफ्तार का मियार का जायजा किया। उन्होंने सुन मनसूबे बिच चिर तमीराती मियार का सख्त नाराजगी का इजहार करदिया मुतलक एजेंसियों को मियारी असूलों हिफाजती जबतियाँ का सख्ती नाल अमल करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला सुन आखिर जो मनसूबे को वेले का मुकम्मल करका लोगों की सहूलत है रजौरी पुंछ जम्मू त नौशहरा के बिशकार चंगे रबते वास्ते बहु अहम है। नायब वज़ीर आला सुन दौरे के दौरान इलाके बिच दुए लड़ सारे तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा किया। जम्मू कश्मीर को मंशियात लानत की पा करने वास्ते 100 दिहाड़े के नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां जोरों नाल चल रही हैं तो मंशियात के ढांचे को जड़ से मुकाए नेज इजलात में फंसे नौजवानों को बाहर कड़े वास्ते लड़ सारे इकदाम किए जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दसनिया
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर भी इस समाजी बुराई थी बचने के इकदाम बारे PM श्री गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा बडगाम के प्रिंसिपल शबीर हसैन राथर सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करदिया आख्या
3: नशा एक ऐसी खामोश तबाही है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब खानदानों की खुशियां और माशरे का सुकून छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो

0: आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करे और नौजवान मसबत सरगर्मियों को अपनाए। सब मिलकर अहद करे कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशिया से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे, ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके।
1: एक खबरनामा आकाशवाणी श्रीनगर की नशर की जुड़ रहा है। खबर तुम आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR DTH तक भी सुन सकते हो। भारत सुन साफ तमनाई दी अपनी मुहिम बिच एक तारीखी संगे मील पार किया है। सोशल मीडिया का एक पोस्ट बिच नवी तकाबली दी तमनाई दे मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी सुनाखे जे PM सूर्या घर स्कीम के तहत उन्हें तिकर 40 लाख घर को छतां ता सोलर ला का बख्तियार बनाया गया है। उन्होंने सुनाखे जे ए छड़ी काबली दी तमनाई दी एक पहल नहीं बल्कि इनकलाबी स्कीम है जड़ी शहरियों को बिजली दे सार्फीन थी बिजली पैदा करने वाले बिच तब्दीली आन रही है। SKICC श्रीनगर में कल जन 3 मई थी 2 रोज़ा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का 3 एडिशन मुनक्द हो सी। इस फेस्टिवल की अहमियत बारे कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नायरा मंजूर सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदिया आख्या।
2: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनक्द किया जाता है। ये हमारा 3rd एडिशन है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st मई को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। सो वील हैव मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा। वील ऑल्सो हैव अ सेकंड स्टेज व्हिच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन। हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशन्स, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
1: आला तालीम के महकमे सुन सरकारी डिग्री कॉलेज में UG दाखला गिनने वास्ते ऑनलाइन दरखास्तां जमा कराने तक कॉलेज तरजीहों को अपडेट करने दी तारीख को बढ़ा दिता है। आला तालीम के महकमे के मुताबिक उम्मीदवार कल जिनी 3 मई सईं 5 बजे तिकर दाखला पोर्टल JKAdmission.in तक अपनी दरखास्त जमा या अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले नाल जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख आजाद बशीर सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदे आख्या।
3: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी और मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: कौम आज साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को उनकी बरसी तक याद कर रही है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखला अमित शाह सुन आजानी को खराज गिदत अदा किया। अपने कनी कनी स्नेहों में उन्हें सुनाखे जी चौधरी चरण सिंह एक कदावर लीडर आसे जिन्हें सुन ग्राई तरक्की तो किसानों की बहबूदी वास्ते जबरदस्त वकालत की। जम्मू कश्मीर के बाग मालकों ताजरों वास्ते रेलवे एक बार फिर तेज़ महफूज और काबिल भरोसा टुरने फिरने जरिया बन गया। शमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के मुताबिक इस साल गिलासों के सीजन के दौरान उन्हें तिकर लगभग 43 टन ताज़ा गिलास रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए मुल्क दियाँ मुझ सारिया बड़िया मंडियों तोड़ी पहुँचाए गए। शमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमिश्नर मैनेजर सुनाखे जे ताजर ते बाग मालकों की तरफों रेलवे खिदमतों का भरपूर इस्तेमाल किए जुड़ रहा है, जिस तीन फल के म्यार ताजगी को बरकरार रखने मदद मिल रही है। नाल ही किसानों को चंगी कीमत भी मिल रही है। उन्होंने सुनाखे जे रेलवे किसानों को मौसर त घट लागत आली लॉजिस्टिक सहूलत देने वास्ते पुरअज़म है। आखिर त खास खास खबर एक बार फिर मुकदमे भी फैसले महफूज करने के 3 महीने के अंदर फैसले सुनाने के सारे हाई कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट सुन दी हिदायत। इम्तिहानी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तो मुस्लिम तालिबे इल्मों के मुफादात का तहफ़ करने की मरकज सुन दी यकीन दहानी। दिल्ली से कटरा तोड़ी मुजवजा NE5 एक्सप्रेसवे को कौमी शाहराह के नैटवर्क भी शामिल करने का नोटिफिकेशन किए गए जारी और PM सूर्या कार स्कीम के तहत 43 लाख कार लाए गए सोलर। इस नाल ही पहाड़ी खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी थी अगला खबरनामा 5:50 तक गोरी जबान भी नशो सी। दो इजाजत, खुदा हाफिज।
4: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम।

साथियों, 31 मई नू विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। तो सानू इस बारे गलबात करनी है क्योंकि नशा जड़ा है ना, वो कोई भी होवे, किस तरह का भी होवे, उस तो सानू नजात पानी है, उस तो सानू दूर रहना है। असी चाहते हैं कि साड़ा मुल्क, साड़ी स्टेट जड़ी है, इन्हां नशियां तो दूर रहे, क्योंकि साड़ा जड़ा यूथ है वो इस पासे लग्या होया है। तो असी जल्दी तो जल्दी चाहते हाँ कि गौरमेंट भी सानू साथ दवे, तो लोग भी आपस में एक दूजे नू इस बारे कह के कि भई सानू अपनी स्टेट नू बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, अपने यूथ नू ठीक करना है, तो सानू कम करना है, कोशिश करनी है कि असी अपनी स्टेट नू नशा मुक्त बनाइए। जिमें कि अजकल साड़ी गवर्नमेंट लगी भी हुई है, कई जगह पर असं सुन रहे हाँ कि बहुत सारे सैमीनार चलाए जा रहे हैं, बहुत जगह पर वे वे मिनिस्टर्स पहुँचते हैं, तो नशे नू जड़ा है कि यूथ नू किया जाता है कि नशा मुक्त स्टेट बनाना है। तो साथियों, कल असी कर रहे सां कि जिदा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जड़ा कि 31 मई नू मनाया जाएगा, ये दिन तंबाकू इस्तेमाल नाल हेल्थ नू की नुकसान होंदे ने ये अवेयर करन लई मनाया जाता है। ये सिर्फ जागरूकता अभियान नहीं, इस गल नू याद दिलांदा है कि तंबाकू दा सेवन अज भी दुनिया भर विच मौत दे सब तो रोके जाण वाले कारण विचों एक है। इस दिन नू मनाण दा ये संदेश स्पष्ट करदा है कि तंबाकू नू ना कहना जीवन नू हाँ कहना है। तंबाकू नाल हेल्थ नू की परेशानियां हुंदी ने, किहड़ी किहड़ी बीमारियां आ जांदी ने जद असी इहदा सेवन करदे हाँ, ते इहनू छड़ना बहुत जरूरी हो जांदा है, क्योंकि इहदे लई अवेयर करना है कि भई पहले तां तुसीं इह लैणा नहीं है। जे फिर कई बंदियां ने इह लैणा शुरू कीता होया है ते उहनां नू छड़ना किस तरह है, छुड़ाना किस तरह है। 2026 दा विषय तंबाकू दे सेवन दे तत्कालीन ते दीर्घकालीन स्वस्थ परिणामां दे बारे जागरूकता बढ़ाना है, ते नाल ही लोगां नू इस नू छड्डन दे लई व्यवहारिक रणनीतियां तो सशक्त बनाउण ते केंद्रित है। इस गल नू स्वीकार करना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, लोगां नू इस तो मुक्त पाउण लई ठोस कदम चुकने ने, यानी कि असी नशियां तो किवें दूर हो सकीए, इदां तो मुक्ति किवें पा सकीए, सानू ठोस कदम चुकने पैणगे। इस काम लई एक दूजे की मदद की भी जरूरत है, क्योंकि असी कहिए जे साड़ी फैमिली विच कोई नहीं है तो फिर दूसरी फैमिली च है तो सानू की जरूरत है। सानू हमेशा मिलजुल के जेकर अपनी स्टेट, अपनी सोसाइटी, अपनी गली, अपनी लेन कहते हैं ना कि उन्हों हर कदम तो हर गल तो सुरक्षित रखना है, तो फिर मिलजुल के जड़ा काम होंदा है ना, वो कल्ला बंदा नहीं कर सकता। विश्व संगठन ने तंबाकू महामारी की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करने लई 1987 विच विश्व तंबाकू दिवस की स्थापना की। ये वार्षिक अभियान तंबाकू के इस्तेमाल तो आने वाली परेशानियां ते नज़र पाता है, इहदे इस्तेमाल नू घट करन लई विशेष कदम

चुके जाने चाहिए ने ते चुके जा भी रहे ने। इस साल का जरा थीम चुनिया गया है, उन्होंने जरा विषय दिता गया है वह है निकोटीन ते तंबाकू की लत का मुकाबला करना। तो फिर जरूरी बनता है कि सानू मिलजुल के इस तो नजात पाना है ते मिलजुल के इस काम ले निकलना है। तंबाकू लैन वाले बंदे दे शरीर विच हर अंग नू क्षति पहुँचती है, यानी बहुत नुकसान होंदा है शरीर नू, लेकिन फिर भी कई बंदे जड़े ने इस पासे लगे हुए ने। इहदे इस्तेमाल नाल हार्ट दियां परेशानियां शुरू हो जांदी ने ते बीपी भी बढ़न लग जांदा है ते ब्लड विच ऑक्सीजन दी जगह कार्बन मोनोक्साइड लैन लगती है जिहदा हार्ट ते गलत असर पैंदा है। कई लोगों नू खांसी दी भी शिकायत हो जांदी है ते उहदे तों भी ज़्यादा जड़ा प्रभाव पैंदा है वह फेफड़ियां ते पैंदा है। इहदे नाल कैंसर, तंबाकू दे सेवन नाल कैंसर दे भी बहुत सारे पेशेंट सुनन नू ते वेखन नू मिलते ने। इहदे नाल होण वालियां बड़ी बीमारियां ने जिदा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़े दी कार्यक्षमता जड़ी रे वह आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है जिहदी वजह नाल साह लैण विच प्रॉब्लम आती है ते हार्ट अटैक दा स्ट्रोक आण दा भी खतरा बन जाता है। तंबाकू लैण वाले लोगों नू मूँह दा कैंसर भी हो जाता है ते मसूड़ियां दी बीमारी भी ते दंदा दा झड़ना भी कहिंदे ने कि शुरू हो जाता है ते होर भी बहुत सारी बीमारियां ने जिन्हां दा सामना उन्हां नू करना पैंदा है। ते क्यों ना फिर इनू छड्डिया जावे, कोशिश कीती जावे, क्योंकि कहिंदे ने ना कि जड़ा नशा कर रहा हुंदा है उन्होंने पता हुंदा कि मेरे शरीर विच की हो रहा है, मैनू इनू छड्डना है, कोशिश दूजे नू करना है, क्योंकि कहिंदे ने जब नशा वड़ गया ना घर विच फिर वो उस बंदे ले नहीं पूरी फैमिली ले एक तबाही लेके आंदा है। ते कोशिश करनी है जेकर किसी घर विच बंदा तंबाकू लैण वाला है या कोई होर नशा करता है ते उनू फैमिली नू मिलके उनू हटाण तो दूर रखण दी कोशिश करनी है, हटाण दी कोशिश करनी है उस तो। लंबे समय तक इस दे इस्तेमाल नाल अखां विच मोतियाबिंद दी शिकायत भी हो जाती है। तंबाकू या सिगरेट लैण वाले परिवार नू परेशानियां दा सामना करना पैंदा है क्योंकि असीं वेखदे हां कि देखो परिवार विच जिथे कोई बंदा लै रहा है नशा, तंबाकू होए या कोई होर नशा, ते घर विच छोटे बच्चे भी ने, घर विच कोई ऐसा होर बंदा भी होना है जो किसी बीमारी नाल जूझ रहा है, ते जेकर ए बंदा तंबाकू लैंदा है या कोई होर नशा करदा है ते जरूर उस छोटे बच्चे ते असर होएगा और जो बंदा बीमार पिया है बिस्तरे विच है उनू भी इहदा असर होएगा। अस्थमा जैसी बीमारियां दी शिकायत भी इहदे नाल हो जाती है, ये भी सारे जानते ने। तुहानू अपने आले दुआले वेखना है कि कोई ऐसा बंदा जड़ा तंबाकू दा सेवन करदा होवे उन्नू समझाना है, दसना है कि ये किन्नी बुरी लत है, इनू जल्दी तो जल्दी छड़ के एक अच्छा इंसान बनिया जावे क्योंकि ये छड़ना संभव है, असंभव नहीं। यही सोच व्यवहारिक रणनीतियां तो चिकित्सा की तरफ लग जाती है क्योंकि जेकर ऐसा बंदा कोई तुहानू मिल जाता है असी उन्नू समझावांगे मिलजुल के ते उन्नू जल्दी तो जल्दी या फिर ऐसी जगह पर जाके एडमिट करवाना चाहिए। कहिंदे ने कि वैसे तंबाकू नू ते आले दुआले वाले बंदे भी ले जाके उस बंदे नू समझा सकते ने, सुधार सकते ने। साथियों ये तो तुसी जानते हो कि 31 मई नू ये दिन मनाया जाएगा तंबाकू निषेध दिवस, लेकिन इस तो सानू इदा मनाण दा ए मनोरथ है कि इस दिन नू असी उसी दिन मना के खत्म नहीं कर देना क्योंकि कहिंदे ने जिदा भी असी कोई फंक्शन मनांदे हैं, कोई भी दिन आंदे ने साडे, ते उस दिन नू अहमियत दे के बस उसी दिन वो दिन खत्म हो जांदे ने, लेकिन उन्हां दिनां दी अहमियत सानू रोज़ रखनी है क्योंकि ये दिन सानू याद दिलांदे ने कि जिदा हुण असी तंबाकू वाला दिन, तंबाकू निषेध दिवस मनाना है 31 मई नू, ते सानू अज तो ही शुरुआत कर लेनी चाहिदी है कि इस दिन नू एक दिन नहीं मनाना, रोज़ इहदा सामना करना है उन्हां लोगों नाल जाके जड़े इन्हां दे विच वड़े हुए ने इन्हां नशियां विच। ये दिन सानू याद दिलांदा है कि तंबाकू दा सेवन साडे जीवन ते समाज लई किन्ना घातक हैगा है। ये सिर्फ एक आदत ही नहीं बल्कि जहर है, तुहाडे ते तुहाडे परिवार नू आस्ते आस्ते ये जहर खत्म कर दिंदा है। जिंदगी अनमोल है, इनू ना गवाओ, तंबाकू छड्डो ते अपणियां नू बचाओ। ये दिल ते फेफड़ियां दी बीमारी दा कारण है, हर साल लखां जाना इहदे विच चली जांदे ने। इहदे विच साडा यूथ शामिल है, इहदे इस्तेमाल वाले लोग जड़े ने, यूथ होवे या कोई कहिंदे कि बुजुर्ग लोग भी जड़े ने इहदे विच शामिल ने तंबाकू लैण विच, ते उहनां नू समझाण दी कोशिश करनी है ते सुधारन दी कोशिश करनी है कि तुसीं अपने नाल नाल अपने परिवार नू भी खत्म कर रहे हो। साथियों ये गलबात असीं तंबाकू दी कर रहे सां जिहड़ा दिन असीं 31 मई नू मनाना है, लेकिन शुरुआत अज तो हो जानी चाहिए है क्योंकि पहले तो ही होके इन्हां नू असी हटाने की कोशिश कर सकते हाँ ते करदे रहना चाहिए है। अज तो शुरुआत करके ये नहीं कि उस दिन नू ही मनाना है, रोज़ सानू इहदी शुरुआत करनी भी चाहिए है ते करदे रहना चाहिए है। साथियों नशा चाहे कोई भी होवे, तंबाकू दा होवे, शराब दा होवे या किसी घर विच सानू कोई ड्रग एडिक्ट बच्चा मिलता है

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन पेश खिदमत है आज का गोजरी प्रोग्राम।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम ले के उन थारो मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा थारी खिदमत में हाजिर हूँ। ते तम सारा ना मेरा तरफ ते प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करूँ कि तम खैर सुख नाल होए का ते अपनो मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होए का। सामीन इकराम, आज जुम्मा को मुबारक दिन है, इस वास्ते प्रोग्राम की शुरुआत करा का हम्मद बारी ताला के नाल। आवाज़ है गुलाम हसन तबस्सम की।

हमद बारी ताला के बाद अल्लाह ताला का हबीब तय रहमतुल आलमीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र मारे वास्ते है, लाजमी है। इस वास्ते पेश है थारी खिदमत माँ या नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ है मोहम्मद इकबाल मलन गामी की।

जुमा का दिन ना जुम्मो इस वजह ते क्यों जाए कि इस दिन तमाम मुसलमान नमाज जुम्मा वास्ते एक जगह मस्जिद मा जमा हुए ते नमाज जुम्मा अदा करें। जुम्मा के दिन ही तमाम मुसलमाना ना एक जगह जमा होने को मौको मिला ते हफ्ता के बाद एक दूजा के नाल मुलाकात को मौको भी नसीब हुआ। लोग एक दूजा ना गल लावें, खैर खबर पूछें ते खुशी खुशी एक दूजा के नाल इन्हें ना इस मुलाकात को मौको मिले, जिसके नाल आम मुसलमाना मा आपसी भाईचारो ते मेहरो मोहब्बत भी बच जाए। अगे जी थारे वास्ते आमने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला के रखी हुई है, आवाज़ है आरिफ मंजूर की, सुन लिया।

0: समीन, अभी आप गोजरी प्रोग्राम से बात कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
2: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
4: सब्र रोशिद सुलुम।
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 5:50 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए गोजरी में खबरें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों,

0: प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तो आकाशवाणी हूं श्रीनगर स्टेशन ट्यून करमुत मीडियम वेव अखत शुरा किलो हर्ट्स तो FM 3.5 में गर्दन पे समीन 5 मिनट पे 6 बजे पेश प्रोग्राम गमी बानि हिंद खतरा।

0: रात दिल से बनाई थी।
1: शर्बीन के समन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं इमसाल की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लगभग 750 नीम फौजी कंपनियां तैनात। स्विट्जरलैंड की सफीर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से मुलाकी, दूरस्ता उनकी उम्मीद जाहिर की। 2022 की हदबंदी के ताल्लुक से कई इलाकों की आबादी के तहफुजात बरकरार। और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आबपाशी की सहूलियात गैर तसल्ली बख्श। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
8: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर ये है आज सठा द्रो?
8: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहतमंद प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसैलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राब्ता।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
12: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
11: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
12: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
11: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
12: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
11: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
12: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
11: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
1: शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 670 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज कंपनियां तैनात करने को मंजूरी दी है। वाजिर है कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक ये यात्रा के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैनाती होगी, जिसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ करीबी हमाहंगी में मंसूबाबंद किया गया है। CAPF एहलकारों को लखनपुर से लेकर गुफा तक पूरे रूट पर तैनात किया जाएगा, जिसमें बालतल और पहलगाम रूट्स, बालतल और नुनमन बेस कैंप, यात्री निवास जम्मू, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और दीगर अहम मकामात शामिल हैं। इजाफी नीम फौजी दस्ते जून के पहले हफ्ते से जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 25 जून तक तैनाती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। भारतीय फौज यात्रा रूट्स के स्ट्रेटेजिक मकामात और गुफा के अतराफ को महफूज बनाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी ऑपरेशंस की हमाहंगी यकीनी बनाएगी। वाजिर है कि इमसाल की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक मुल्क भर में नामजद बैंक ब्रांचों

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीर

के जरिए 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। ये 57 रोजा यात्रा बालतल और नुनवन पहलगाम रूट से बैक वक्त 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्ताम को पहुंचेगी। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर माया चसाफी ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ तआवुन के इम्कान पर तबादले ख्याल किया। इस सिलसिले में वजीर आला के दफ्तर के मुताबिक मुलाकात में पायदार सियाहत, बागबानी और मुतल्लिक शोबों पर बातचीत हुई। याद रहे कि स्विस सफीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कल मुलाकात की थी। अपने एक बयान में सफीर ने कहा कि श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकातें नतीजा खेज रहीं, जिनमें पायदार सियाहत, पेशावराना तरबियत, फूड प्रोसेसिंग और ज़िरात में तआवुन के इम्कान पर बात हुई। माया चसाफी ने कहा कि वो इस बात पर फख्र महसूस करती हैं कि स्विस महारत खित्ते की तरक्की में निजी शोबे के जरिए अपना किरदार अदा कर रही है, जिसमें टनल्स, पुल,

0: इज़राइल जिनमें पायदार सियाहत, पेशेवराना तरबियत, फूड प्रोसेसिंग और ज़िरात में तआवुन के इम्कानात पर बात हुई। माया चसाफी ने कहा कि वो इस बात पर फख्र महसूस करती हैं कि स्विस महारत खित्ते की तरक्की में निजी शोबे के जरिए अपना किरदार अदा कर रही है, जिसमें टनल्स, पुल, हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी और मुश्तरका तहकीकी मनसूबे शामिल हैं। स्विस सफीर ने मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा भी किया, जहां की खूबसूरती देखकर वो मशहूर हुईं। समन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मुल्क के तमाम हाईकोर्ट्स को हिदायत जारी की कि जिन मामलात में फैसलों को महफूज रखा गया है, उनके फैसले 3 माह के अंदर अंदर सादिर किए जाएं। अदालत उज़्मा के बकौल, फैसले को महफूज रखे जाने की तारीख से सिर्फ 3 माह के अंदर फैसला सादिर किया जाना चाहिए। इधर कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने आज एक फैसले में उन पेटिशन्स को खारिज कर दिया जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस में SI यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए उम्र की बालाई हद में छूट देने की दरखास्त की गई थी। अब एक और मौजू, जम्मू कश्मीर में साल 2022 में रूबामल लाई गई हदबंदी के ताल्लुक से कई इलाका जात की आबादी को तरह तरह की शिकायतें हैं। इस सिलसिले में रामबन की तहसील नील के मुख्तलिफ देहात की आबादी का कहना है कि हदबंदी के नतीजे में कई देहात को नील से अलग करके दीगर तहसीलों के साथ जोड़ दिया गया, ताहम ये कदम उनके लिए खासा परेशान कुन और नुकसानदेह साबित हुआ है। बताया जाता है कि हदबंदी के बायस ये एक ही खानदान के अफराद की तहसीलें मुख्तलिफ हो गई हैं और यूं रेवेन्यू रिकॉर्ड की निस्बत से भी अब उन्हें गुना को परेशानियां लाहिक हो रही हैं। तफसीलात के साथ मोहम्मद अस्कीन।
1: जिला रामबन की सब डिवीजन रामसू का दूर उफ्तादा और कुदरती हुसन से मालामाल इलाका नील गुज़श्ता कई सालों से इंतजामी तकसीम और नई असम्बली हदबंदी की वजह से हजारों लोगों के लिए मुश्किलात और तशवीश का बाइस बना हुआ है और नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम और असम्बली हलकों की नई हदबंदी के बाद इलाका नील की इज्तिमाई शिनाख्त अब मुतासिर हुई है और आवाम को रोजमर्रा जिंदगी में कई पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साबका तहसील बानहाल के इलाका नील के मुकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि नील का इलाका माजी में एक मरबूत और मुत्तहद खिता तसव्वुर किया जाता था, लेकिन अब मुख्तलिफ इंतजामी हिस्सों में तकसीम हो चुका है और इसके कई गांवों को तहसील रामसू के तहत रखा गया है, जबकि एक ही इलाके के कई गांवों को तहसील उकड़हाल पुगल परिस्तान के साथ मुंसलिक किया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तकसीम ने इंतजामी मामलात ही नहीं बल्कि समाजी, खानदानी और अवामी सतह पर भी कई मसाइल को जन्म दिया है और कई खानदान ऐसे हैं कि जिनके बाद अफराद एक तहसील में जबकि बाकी दूसरी तहसील में शामिल किए गए हैं। मुकामी समाजी व सियासी कारकुन तारिक इब्राहिम सोहेल और मोहम्मद सादिक नायक ने शहरबीन से बात करते हुए इलाका नील के अवाम की परेशानी बयान करते हुए कहा कि एक ही खानदान के दो बाई तहसील रामसू में शामिल है जबकि दीगर दो बाई उकड़हाल पुगल परिस्तान का हिस्सा बन गए हैं, जिसकी वजह से सरकारी दस्तावेजात, आराजी रिकॉर्ड और दीगर मामलात में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जबकि इलाके की आबादी के एक हिस्से को यहाँ से 30 किलोमीटर दूर नयाबत सेनाबत्ती का हिस्सा बनाया गया है जो हजारों लोगों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इंतजामी तकसीम के बाद मामूली सरकारी कामों के लिए भी मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं और बाज आराजी रिकॉर्ड रामसू में मौजूद है जबकि दीगर मुतलका कागजात उकड़हाल में तलब किए जाते हैं और इसके अलावा तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, बिजली, पानी और दीगर अवामी सहूलियात के मामलात भी हम आहंगी का फुकदान महसूस किया जा रहा है। नील के मुकामी लोगों और सबका पंचायती नुमाइंदों का कहना है कि अगरचि नए इंतजामी यूनिटों के कयाम का मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराम करना था, ताहम जमीनी सतह पर कई पहाड़ी और दूर उपतादा इलाकों में इसके बरक्स उलझने पैदा हुई हैं और नील जैसे इलाकों में जुग्राफियाई कुर्बत, खानदानी रवाबित और मुकामी जरूरियात को नजरअंदाज करके सिर्फ कागजी तकसीम की गई है जिसके मनफी असरात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सन 2014 में जम्मू कश्मीर में नए इंतजामी यूनिटों के कयाम के तहत हुकूमत ने अवामी रसाई और बेहतर इंतजामी सहूलियात फराहम करने के मकसद से कई नई तहसीलें, सब डिवीजन और दीगर इंतजामी इकाइयां कायम की थीं और जिला रामन के दूर उफ्तादा इलाकों में भी इस अमल के तहत उकड़हाल पुगल परिस्तान और रामसू समेत कई नए इंतजामी यूनिट तश्कील दिए गए थे। सन 2020 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में नई असेंबली हदबंदी का अमल शुरू हुआ था और हदबंदी कमीशन की सिफारिश सन 2022 में नाफिज की गई थी और इस नई हल्का बंदी के नतीजे में कई इलाकों की सियासी वाबस्तगियां तब्दील हुई हैं और मुतद्दिद देहात व

0: बस्तियों को नए असेंबली हल्कों के साथ मुंसलिक किया गया है। तहसील रामसू का नील इलाका भी इन्हीं तब्दीलियों से मुतासिर हुआ है, जहां की आबादी को बानहाल और रामबन असेंबली हल्कों में तकसीम कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि इलाका नील में पड़ने वाले हरवाड़ी, सिनेगाम, परिंदर, लदनीहाल, जराडी, नागंदर, हाला, धनमस्ता और सुरंगा को तहसील उकड़हाल पुगल परिस्तान का हिस्सा बनाया गया है, जबकि द्रुपटा, चिदोस, भूरदार, बाटू और बरमूजी को तहसील रामसू का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर ही बस नहीं की गई, बल्कि नील के ही डक, खारवान और रूनी गांव को बानहाल असेंबली हल्का से काटकर रामबन असेंबली निशस्त का हिस्सा बनाया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि हदबंदी और नए इंतजामी यूनिटों का बुनियादी मकसद बेहतर हुक्मरानी, अवामी सहूलियात और इंतजामी रसाई को यकीनी बनाना था, लेकिन नील के लिए ये फैसले जमीनी सतह से मुताबिकत नहीं रखते हैं और एक ही गांव और खानदान को मुख्तलिफ तहसीलों और असेंबली हल्कों में तकसीम करके अवामी मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए हैं और इसके मनफी असरात हजारों लोगों पर बरहे रास्त मुरतब हो गए हैं। मुकामी लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने यक जबान होकर हुकूमत और मुतलका हुकाम से अपील की है कि नील के मामले का संजीदगी से जायजा लिया जाए और इंतजामी व इंतखाबी तकसीम में अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इसलाहात की जाए और ऐसे हसास और दूर उफ्तादा इलाकों के बारे में फैसले करते वक्त जुग्राफियाई हालात, खानदानी रवाबित और अवामी जरूरियात को तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को हकीकी मानों में बेहतर इंतजामिया और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस सिलसिले में बात करने पर मेंबर असेंबली बानहाल सज्जाद शाहीन ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने नील के अवाम को दरपेश इस मसले को पहले भी असेंबली में उठाया है और उनकी कोशिश होगी कि नील के इलाके में बुनियादी सतह पर की गई इस गैर मुनसफाना तकसीम को ठीक करके इसे तहसील रामसू से ही मुंसलिक किया जाए, ताकि मुनकसिम अवाम को मजीद मुश्किल का सामना न करना पड़े।
1: मोहम्मद अस्किन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर सोपोर पुलिस ने कहा है कि पांजीपुरा इलाके की एक पुरानी वीडियो, जो दरअसल 2025 के एक वाकये से मुतालिक है और इस पर उस वक्त कार्रवाई हो चुकी थी, को सोशल मीडिया पर हालिया वाकया जाहिर करके फैलाया जा रहा है। हुकाम ने बताया कि इस गुमराहकुन वीडियो को बाज सोशल मीडिया सार्फिन और न्यूज पेजेस शेयर कर रहे हैं। पुलिस हुकाम के बकौल यह मामला पहले ही निपटा दिया गया था और इसकी दोबारा तशहीर बेबुनियाद और गैर जरूरी है। सोपोर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मवाद को शेयर करने से पहले हकायक की तस्दीक किया करें, क्योंकि पुरानी वीडियोस को नई खबर के तौर पर फैलाना गलतफहमी पैदा करता है और मुतासर कुंभों के लिए गैर जरूरी परेशानी का बायस बनता है। दरियासना रहीम रिजवान की इतला है कि जोजिला के मकाम पर आज उस वक्त एक ड्राइवर मौजजाती तौर पर बच गया, जब सीमेंट का वो ट्रक जिसे वो चला रहा था उसके काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरा। दरियासना कल शाम सोनमर्ग के इलाके में चलने वाली तेज हवाओं के नतीजे में फिश पॉन्ड सोनमर्ग के नजदीक नस्ब झूले नीचे गिराए, जिसके नतीजे में सफापुरा का एक बाशिंदा जख्मी हो गया, जिसे इलाज मौलजे के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा मुंतकिल किया गया है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़, शहर बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा

0: आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स और वादी के मारूफ ब्रॉडकास्टर तलहा जहांगीर रहमानी आज अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। तलहा जहांगीर ने अपने करियर का बेशतर हिस्सा आकाशवाणी श्रीनगर में गुजारा और मुख्तलिफ नौ प्रोग्राम पेश करके सामयन में एक मुनफरिद पहचान बनाई। उनका शुमार वादी के अच्छे मिजाह निगारों में भी होता रहा है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अमले ने तलहा जहांगीर के लिए एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। समनवादी में गुज़श्ता लगभग एक माह से पाए जा रहे मौसम के बेहंगम मिजाज ने दीगर मामूलात जिंदगी के साथ साथ ज़रई शोबे को खासा मुतासिर कर रखा है। वादी के मुख्तलिफ जिलों में जालाबारी, बारिशों और आंधियों के नतीजे में जहां मेवबागात मुतासिर हुए हैं, वहीं धान की पनीरी और सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान कई इलाकाजात से इतलात आ रही हैं कि मेवबागात को स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू और दीगर ऐसी बीमारियां लाहिक हो चुकी हैं। मालकान बागात परेशान हैं और उन्हें एहतमाल है कि इन बीमारियों का अगर बरवक्त सद्देबाव ना किया गया तो मेवे की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इसी पस मंजर में एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट।
1: वादी कश्मीर में गुजशत कई हफ्तों से गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल की वजह से जहां काश्तकारों की सरगर्मियां मुतासर हो गई है, वहीं तेजर की बारिशों जालाबारी की वजह से जहां किसानों को नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है, वहीं गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल की वजह से सेब और दीगर मेवा बागात में कई तरह की बीमारियां फूट पड़ने से बाग मालिकान में तश्वीश की लहर दौड़ गई है। जनूबी कश्मीर के ताल सब जिले में भी गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल की इस मार ने मेवा संघ से वाबस्त अफराद को परेशानियों में धकेल दिया है, क्योंकि जहां हालिया जालाबारी ने मंदूरा, शितलन, जराड़ियार, माछामा, नागाबल और दीगर देहात में मेवा बागात को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, वहीं पूरे सब जिले में बारिशों के बाद कई इलाकों में स्कैब, आर्टनेरिया, पाउडर मिल्ड्यू, लीफ माइनर और कई दीगर अकसाम की बीमारियां फूट पड़ने से मालिकानी बागात में तश्वीश पैदा हो गई है। इस नुमाइंदे में कई मेवा बागात मालिकान को हाथों में सेब और पत्ते लेते हुए हॉर्टिकल्चर ऑफिस का रुख करते हुए देखा, जिन्होंने मुतजिक्र बीमारी के बारे में महकमे के माहरीन से राय तलब किया है। कई बाग मालिकान ने शहरबीन को बताया कि जहां कई इलाकों में शदीद जालाबारी ने पहले ही किसानों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है, वहीं हालिया बारिशों के बाद अब स्कैब और लीफ माइनर जैसी बीमारियां फूट पड़ने से किसान अजहद परेशान है, क्योंकि बार बार की दवाओं के बावजूद ये बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कई मेवा बाग मालिकान ने बताया कि त्राल इलाके में जरासीम कुछ अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलरों से सैंपल उठाकर ये बात सामने लानी चाहिए कि क्या वाकई इलाके में मयारी अद्वियात दस्तियाब है कि नहीं, क्योंकि फिर वक्त तो आवाम को इस हवाले से तहफात हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल सरताज अहमद ने जर्विन को बताया कि गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल के बाद स्कैब और दीगर बीमारियां लग जाना एक फितरी अमल है, तहम उसे अद्वियात छिड़कने से मुकम्मल तौर कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने बाग मालिकान को अद्वियात छिड़कने से काबल उनसे सलाह मशवरा करने की तलकीन की, क्योंकि मुख्तलिफ बागात में बीमारियों की हालत मुख्तलिफ हुआ करती है। मैं आपको बता दूं, त्राल इलाके में गुजशत एक दहाई के दौरान हॉर्टिकल्चर का रुझान बढ़ गया है और फिल वक्त सेंगलू अराजी हॉर्टिकल्चर शोबे के जर इस्तेमाल है।
0: शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी और इस रिपोर्ट के नष्ट किए जाने के दौरान ही अभी अभी हमें फोन मौसूल हुआ है रहीम रिजवान का, जिन्हें बताया कि कंगन सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस बालाई इलाकों में शदीद जालाबारी हो रही है, जिससे वहां फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। समन वादी के मुख्तलिफ जिलों से शहरबीन को ये शिकायत अभी भी मिल रही है कि इरीगेशन महकमे की तरफ से आबपाशी कोहलों और कनालों की मरम्मत तजदीद और बहाली के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक दर्जनों आबपाशी कोहलें काबिले इस्तेमाल नहीं पाई जा रही हैं। इस सिलसिले में बड़गाम से यूनिस पर्रे का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ तहसीलों में किसान मुनासिब आबपाशी सहूलियात दस्तियाब न होने के बायस सख्त परेशान हैं। किसानों के बकौल उन्होंने अब तक कई बार महकमे आबपाशी के मकामी अहलकारों से इस बारे में रुजू किया, पर सूरत हाल जूं की तूं है। आपको याद होगा कि हमने इस सिलसिले में कुछ वक्त पहले, लगभग दो तीन हफ्ते पहले, इरीगेशन महकमे के अफसरान से रुजू किया था, जिन्होंने यकीन दिलाया था कि अनकरीब आबपाशी कोहनों और कनालों को बहाल किया जाएगा, ताहम जमीनी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ बताई जाती है। फिलहाल बड़गाम से यूनुस पर्रे की यह रिपोर्ट।
1: वादी में आपाशी नहरों की बरवकत मरम्मत और सफाई न होने की वजह से जरे अराजी तबाही के दाहने पर पहुंच गए, जिसे मकामी किसानों और जमींदारों में शदीद तश्वीश पाई जा रही है। वहीं कस्बस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में नहरें कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके, क्योंकि महकमा इरीगेशन की गफलत शारी की वजह से जिले के दर्जनों आपाशी कोहलों की वक्त पर सफाई न होने की वजह से किसानों को जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिले के बीरवा, खाग, शुलीपुरा, पखरपुरा, मागाम, सोईबुक, कानहामा, मखामा, बंडगाम, हरदोमाल,

0: चारूरा, खानसाब चारूरा और पोस्टकर व दीगर इलाकों के लोगों के मुताबिक जिले में आपाशी कॉलों की कई सालों से न मरम्मत और न ही सफाई की गई है और इन कॉलों की तरफ महकमा अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जमींदारों के खेत खतरे में है। बकौल लोग हजारों कनाल दरे अराजी और मेवा बागात महकमा आपाशी की लापरवाही से तबाह हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जिले के मैदानी इलाकों में शाली लगाने का सीजन शद मत से जारी है। वहीं ऊपरी इलाकों में आने वाले दिनों में पनीरी लगाने के लिए पानी की अशद जरूरत है, लेकिन आपाशी नहरें कोड़ेदानों में तब्दील हो चुके हैं। बड़गाम जिले में सैराब करने वाले कनालों में लार कनाल, अहजी कनाल, सरश कोल, मलकोल, नाले तुलब्रन, नाले गोगलडारा, शाली गंगा, दूध गंगा और सकनाग नाले से मुंसलिक मुख्तलिफ कौलों महकमे की अदम तवज्जो की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों के जमींदारों और काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इधर खाग और पोस्कर इलाके के मुतअद्दिद गांव देहात के लोग इन दिनों काफी परेशान हाल है, क्योंकि गोगलडारा इलाके में नहरों की खस्ताहाली और बरसों से सफाई न होने की वजह से कौलों में मिट्टी और कोड़ा जमा हो गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। त्रापाई, दालवाश, लोकीपुरा और शारण व दीगर इलाकों में जहां पर धान की खेती की जाती है, ताम इन इलाकों में खेती के लिए आपाशी का इंतजाम न होने की वजह से किसान काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मजकूरा इलाके में धान की पनीरी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताम आपाशी की परेशानी के बाइस अक्सर जरी जमीन बंजर होने लगी है। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बड़गाम से अपील की है कि वो इस मामले का आज खुद नोटिस ले और इन इलाकों को आपाशी की मुनासिब सहूलियतें फराहम करे, ताकि किसानों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इधर आज डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अतर आमिर शफीक खान ने एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी के हमरा वातलपुरा में 10.5 लाख की लागत से मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फील्ड की संग बुनियाद डाली, जबकि बाद में डिप्टी कमिश्नर ने टाउन हॉल मागा में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत करते हुए लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा।
1: बड़गाम जिले में आबपाशी सहूलियात का फुकदान, यूनिस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। हुकूमत ने चंद माह पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा करके इसे 18% बढ़ा दिया था। इस इजाफे की नस्बत से आम लोगों के तहफ़ुज़ात अपनी जगह, ताहम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरबीन को ये शिकायत लगातार मौसूल हो रही है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स किराए में मनमाना इजाफा करने के मुर्तकिब हो रहे हैं और ये कि कहीं डेढ़ गुना तो कहीं दोगुना इजाफा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हमने इस ताल्लुक से अभी चंद रोज पहले राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट नश्र की थी। इसी सिलसिले में कुलगाम से फारूक राठौर की यह रिपोर्ट।
2: कुलगाम जिले में अगरचे निजी ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, तहम मनमाने किरायों ने आम लोगों के मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद निजी ट्रांसपोर्ट पर सफर करने पर मजबूर है, लेकिन किरायों में मुसलसल इजाफे के बाइस अवाम सख्त परेशानी का शिकार है। मुकामी लोगों का कहना है कि मुख्तसर फासले के लिए भी गैर मामूली किराया वसूल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कुलगाम से धमाल हाजीपुरा तक तकरीबन 12 किलोमीटर के सफर के लिए फी मुसाफिर से 40 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि धमाल हाजीपुरा से नंगी मरग तक महज 6 किलोमीटर के फासले का किराया 30 रुपए वसूल किया जा रहा है। इसी तरह याड़ी खा तक सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले का किराया भी 30 रुपए अदा करने पड़ते हैं। सफर टंगपोरे से काजीगुंड तक महज 8 किलोमीटर के सफर का किराया 30 रुपए, जबकि सपट से कुलगाम तक सिर्फ 9 किलोमीटर का किराया भी 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक इलाका कुंड में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक महज 10 किलोमीटर के सफर के लिए 35 से 40 रुपए तक किराया वसूल किया जाता है, जिस पर अवाम की जानिब से शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। गुलजाराबाद, दानवाड़, अहरबल और कुलगाम से अनंतनाग के साथ साथ बुनीगाम से सफर टंगपुरा और कुलगाम से शुपयार रूट्स पर भी किरायों में नुमाया इजाफा पाया जा रहा है, जबकि कुलगाम से यारीपोरा और होमशाली बुक रूट्स का भी यही हाल है। मुकामी शहरियों के मुताबिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मालिकान अक्सर अपनी मनमर्जी से किराया तय करते हैं और गाड़ियों में सरकारी किराया नामा भी चस्पान नहीं होता है। अवामी हलकों का इल्जाम है कि जिले के मुख्तलिफ रूट्स पर यकसान फासले के लिए अलग अलग किराया वसूल किया जाता है, जबकि मुसाफिरों के साथ बहस तकरार के वाकात भी मामूल बनते जा रहे हैं। अवामी हलकों का मजीद कहना है कि बैज इलाकों में तो सिर्फ 2 किलोमीटर के मुख्तसर फासले के लिए भी 20 रुपए वसूल किए जाते हैं, जिससे गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तलवा, मजदूर, मुलाजमीन, मरीज और रोजाना सफर करने वाले सैकड़ों लोग इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर है। अगरचे ARTO कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद की जानिब से किराए शेड्यूल को मुनज्जम बनाने, पटरी पर लाने और सरकारी किराए

0: को बखूबी समझती है और ये भी तस्लीम करती है कि उनका एतमाद मजरूह हुआ है।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने सख्त फैसला इसलिए लिया ताकि किसी भी मुस्तहक तालिबे इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहानी माफिया के हाथों बेजाबतगियों का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नीट का सवालनामा लीक होने के मामले को निहायत तश्वीशनाक बताया है। नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने इस मामले की बारीक बीन तहकीकात करने की मांग रखी।
2: तो पांच रियासतों में जिसमें हुआ इसे तहकीकात जबरदस्त होनी चाहिए, जो ने किया है उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे सफर करते हैं, बच्चों को फिर से इम्तिहान देना पड़े और इस गर्मी में कहीं 45 डिग्री है, कहीं 48 डिग्री है, अल्लाह ही रहम करे।
0: दरियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मशरिक वस्ता की कशीदगी पर तबसरा करते हुए कहा कि सूरतहाल की वजह से आलमी मईशत मुतासिर हो रही है जबकि गरीब अवाम महंगाई का शिकार हो रहे हैं। वो अपनी रिहायशगाह पर उनसे मिलने आए कई वफूद और पार्टी कारकुनान से बात कर रहे थे। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर माया तसाफी ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों शख्सियात ने देरपा, सियाहत, बागबानी और दीगर मुंसलिक सेक्टरों समेत बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वाज रहे कि वादी के दौरे पर आई हुई सफीर मौसूफा ने कश्मीर की फितरी और आफाकी खूबसूरती, नीज मालामाल सकाफती विरसे और बेपनाह इकतसादी सलाहियत की सराहना की। इस मौके पर वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर की सामाजिक इकतसादी तरक्की के लिए आलमी सतह के बेहतरीन तौर तरीकों को इख्तियार करने की जरूरत उजागर की। इससे पहले सफीर मौसूफा ने कल लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी है और मनशियात के ढांचे को खत्म करने, नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजावादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में इस सामाजिक बुराई से बचने के इकदाम के बारे में पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हुमहामा बड़गाम के प्रिंसिपल शब्बीर हुसैन राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: नशा एक ऐसी खामोश तबाही है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों की खुशियां और माशरे का सुकून छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करें और नौजवान मसबत सरगर्मियों को अपनाएं। सब मिलकर अहद करें कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशिया से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें।
0: इसी दौरान जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में 1 जून को एक पदयात्रा का अहतमाम हो रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि जिले के तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम ने आज एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी के हमरा इस रैली के सिलसिले में बस स्टैंड लारू में तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने कहा,
5: अरेंजमेंट्स पूरी तरीके से जारी है, सारी प्रोग्रेस हो रही है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 1 जून को सुबह 7 बजे तक जो है यहाँ पे आ जाएं, अपना जो है जगह वो ले लें ताकि जो है एक स्मूथ प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। काफी सारे लोगों का काफी एक ह्यूज पार्टिसिपेशन हमें नजर आया। अभी तक जो 50 दिन के जो कैंपेन हुए हैं उसमें लोगों ने काफी एक मीन्स इंटेंसिव तरीके से इस अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है। उस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा तहसील, पंचायत एरिया है वो नहीं छूटेगा जहाँ से लोग ना आए। काफी ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पे चांस है।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस भी मनशियात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखे हुए। इस सिलसिले में गांधरबल पुलिस ने जिले के वंधामा इलाके में गैरकानूनी खशखाश की फसल को तबाह करके मुतलिका काश्तकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने जिले के नागबल इलाके से अबरार अहमद परे नामी एक स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मनशियात की कुछ मकदार बरामद कर ली है। نائب وزیرالہ سریندر چودھری نے کالیدھر نوشہرہ میں زیر تعمیر سنگل ٹنل منصوبے کا معائنہ کیا اور کام کی رفتار و معیار کا جائزہ

0: एक मजबूत आला है। सदर मौसूफ ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा की मौजूदगी में बीजेपी महिला मोर्चे की एक मीटिंग की भी सदारत की, जिस दौरान मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल की तकमील पर हसूलियाबियों को उजागर करने की मुहिम का जायजा लिया गया। पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने मौजूदा गर्म लहर के चलते जम्मू खत्ते में बिलाखलल बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार को यह कहते हुए हदफ़ तनकीद बनाया है कि यह हुकूमत ज़मीनी सतह के हक़ायक़ से दूर है। एक बयान में पार्टी के सदर जीएम शाहीन ने वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत सरकार के अवामी मसाइल से उनके बकौल बेएतना होने पर तश्वीश का इजहार किया है। महकमा आला तालीम ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में यूजी दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। महकमा आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब कल यानी 30 मई शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्तें जमा या अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी और मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है, तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
0: जिला बारामूला के कई इलाकों में आज फिर एक बार जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। हमारे बारामूला के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के गुलमर्ग इलाके में आज उस वक्त आधे दर्जन से ज्यादा भेड़ हलाक हो गए, जब तेज हवाओं के नतीजे में वो एक बड़े पेड़ की जद में आ गए। उधर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्म लहर की लपेट में, इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश होने की पेशगोई की है। इधर जम्मू कश्मीर खासतौर पर जम्मू खित्ते के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत में रोज अफजों इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के पेश नजर लोगों को कई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है, ताकि वो इसके मुजर असरात से बच सके। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
2: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहा है, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सके।
0: कौम आज साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को उनकी बरसी पर याद कर रही है। नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और वजीर दाखिला अमित शाह ने आजहानी को खराज अकीदत पेश किया। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक कदावर लीडर थे, जिन्होंने हमेशा देही भारत और किसानों की बहबूद के लिए जबरदस्त वकालत की। जम्मू कश्मीर के बाग मालकान और ताजरों के लिए रेलवे एक बार फिर तेज, महफूज और काबिल एतमाद जरिए नकल हमल साबित हो रहा है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के मुताबिक रवा चेरी सीजन के दौरान अब तक तकरीबन 43 टन ताजा चेरी रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ बड़ी मंडियों तक कामयाबी के साथ पहुंचाई जा चुकी है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा है कि ताजरों और बाग मालकान की जानिब से रेलवे खिदमात का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फल के मयार और ताजगी को बरकरार रखने में मदद मिल रही है, साथ ही किसानों को बेहतर कीमत भी हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे किसानों को मौसर और कम लागत लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर

एक बड़ी वजह तालीमी निज़ाम का नज़रियाती और रिवायती अंदाज़ है। तालीमी इदारों में ज़्यादातर तवज्जो इम्तहानात, डिग्रियों और रट्टा सिस्टम पर दी जाती है, जबकि तख्लीकी सोच, तज्जियाती सलाहियत और तहकीकाती रुझान को कम अहमियत मिलती है। इस माहौल में तलबा इल्म की गहराई के बजाय सिर्फ तालीमी असनाद हासिल करने तक महदूद रहते हैं। तहकीक के लिए नाकाफी फंडिंग भी एक अहम मसला है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा तहकीक और जिद्दत पर खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान में तहकीकाती शोबों के लिए वसाइल महदूद हैं। यूनिवर्सिटीज़, लेबॉरट्रीज और तहकीकी इदारों को जदीद सहूलियात और मतलूबा माली मावनत न मिलने के बायस मयारी तहकीक का अमल मुतासर हो रहा है। माहिर असातिज़ा और तरबियत याफ्ता मुतहकीन की कमी भी इस बहरान को गहरा कर रही है। बहुत से तालीमी इदारे जदीद तहकीकाती माहौल फराहम नहीं कर पा रहे, जिसके बायस नौजवान मुहक्किकीन को अपनी सलाहियतें बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के मौके कम मिलते हैं। इस सूरत हाल में तहकीक का मयार मुतासर हो रहा है। ब्रेन ड्रेन भी तहकीक के फुकदान की एक बड़ी वजह बन चुका है। काबिल और बासलाहियत नौजवान बेहतर मौके, तहकीकाती सहूलियात और माली इस्तेकाम की तलाश में बीरून मुल्क जा रहे हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी ज़हीन अफरादी कुव्वत से महरूम हो रहा है, जबकि तहकीकाती शोबे मज़ीद कमज़ोर पड़ रहे हैं। सन्नती और तहकीकी इदारों के दरमियान राबते की कमी भी तरक्की की राह में रुकावट है। तरक्की याफ्ता ममालिक में यूनिवर्सिटियाँ, सन्नतें और तहकीकी मराकज़ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजी, मसनूआत और मौशी तरक्की को फ़रोग मिलता है। पाकिस्तान में ये राबता महदूद होने के बायस तहकीक अमली मैदान में मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रही। तहकीक के फुकदान के असरात नहायत वसी हैं। सबसे पहले साइंसी और तकनीकी तरक्की मुतासर हो रही है। जब मुल्क जदीद तहकीक में पीछे रह जाए तो नई इजादात, सनती जिद्दत और टेक्नोलॉजी की तरक्की भी महदूद हो जाती है। बीरूनी टेक्नोलॉजी पर इन्हसार बढ़ रहा है, जो मौशी खुद मुख्तारी को भी मुतासर करता है। तालीम का मयार भी तहकीक के फुकदान से मुतासर हो रहा है। जब तालीमी इदारे तहकीक और तख्लीकी सोच को फरोग न दें तो तलबा में जिद्दत, तनकीदी फिक्र और मसला हल करने की सलाहियत कमज़ोर रहती है। इसके नतीजे में तालीम अमली तरक्की के बजाय सिर्फ डिग्री के हसूल तक महदूद हो जाती है। सेहत, ज़राअत, माहौलियात और तवानाई जैसे अहम शोबे भी तहकीक की कमज़ोरी के बायस मसाइल का शिकार हैं। मकामी सतह पर तहकीक न होने के बायस कौमी मसाइल के देरपा और मौसर हल सामने नहीं आ पा रहे। यही वजह है कि कई शोबे जदीद दुनिया के तकाजों के मुताबिक तरक्की नहीं कर पा रहे। तहकीक के कमज़ोर कल्चर ने नौजवान नस्ल की फिक्री तरक्की को भी मुतासर किया है। पाकिस्तान में नौजवानों में सवाल करने, नए ख्यालात पेश करने और तख्लीकी अंदाज में सोचने का रुझान महदूद हो रहा है। इस सूरत हाल में इख्तरा और इल्मी तरक्की का अमल सुस्त पड़ता जा रहा है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी जामियात और तहकीकी इदारों की कमज़ोर पोजीशन भी इसी मसले की अकासी करती है। आलमी सतह पर तहकीक और तरक्की का अहम पैमाना समझा जाता है, मगर तहकीकाती सरगर्मियों की कमी के बायस पाकिस्तान इल्मी मैदान में मतलूबा मकाम हासिल नहीं कर पा रहा। तहकीक के फुकदान ने रियासती पॉलिसी साजी को भी मुतासर किया है। जब पॉलिसियों की बुनियाद मजबूत तहकीक, एदाद शुमार और तज्जिये पर न हो तो फैसले ज़्यादातर वक्ती नवियत के होते हैं। इससे तवील मुद्दती कौमी मनसूबा बंदी कमज़ोर पड़ जाती है। पाकिस्तान में तहकीक के फुकदान और तरक्की की रुकावटें एक ऐसे निज़ामी बहरान की निशानदेही करती है जो तालीम, मईशत, टेक्नोलॉजी और कौमी तरक्की को बेक वक्त मुतासर कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान कई शोबों में अपनी मुकम्मल सलाहियतों के बावजूद मतलूबा तरक्की हासिल नहीं कर पा रहा और आलमी सतह पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। सामीन, आज जुम्मतुल मुबारक है, आइए समात करते हैं ये हमदे बारी ताला।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन पाकिस्तान एक ज़रिय मुल्क के तौर पर जाना जाता है, जहां मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। दही आबादी की अक्सरियत का रोज़गार, आमदनी और तर्ज जिंदगी बराह रास्त ज़रिय शोबे पर मुनहसर है। इसके बावजूद हालिया बरसों में ज़रिय ज़वाल और दही मईशत के मसाइल शिदत इख्तियार करते जा रहे हैं। पैदावार में कमी, बढ़ती हुई लागत, पानी की किल्लत और मौशी अदम इस्तेहकाम ने किसानों और दही इलाकों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है, जिसके असरात कौमी मईशत पर भी नुमाया तौर पर जाहिर हो रहे हैं। समिन ज़रिय ज़वाल की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। पाकिस्तान में आबादी में इजाफा, मौसमियाती तब्दीली और आबी वसाइल के नाकस इंतज़ाम के बायस ज़रिय शोबा शदीद दबाव का शिकार है। नहरी निज़ाम की कमज़ोर हालत, पानी की कमी और बारिशों में गैर यकीनी सूरत हाल फसलों की पैदावार को मुतासर कर रही है। कई इलाकों में किसान पानी की अदम दस्तियाबी के बायस फसलें उगाने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। ज़रिय अखराजात में मुसलसल इजाफा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। खाद, बीज, ज़रिय अद्वियात, बिजली और ईंधन की कीमतों में इजाफे ने काश्तकारी को महंगा कर दिया है। छोटे किसान महदूद वसाइल के बायस इन अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके नतीजे में उनकी आमदनी और मौशी हालत मजीद कमज़ोर हो रही है। जदीद ज़रिय टेक्नोलॉजी और सहूलियात की कमी भी ज़रिय ज़वाल का सबब बन रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक जदीद मशीनरी, तहकीक और साइंसी तरीकों के ज़रिए ज़रिय पैदावार में इजाफा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कई दही इलाकों में अब भी रिवायती तरीक़ेकार से काश्त राइज है। इस फर्क के बायस ज़रिय पैदावार और आलमी मयार के मुताबिक तरक्की नहीं कर पा रही। ज़मीन की गैर मसावी तकसीम भी दही मईशत के मसाइल में अहम किरदार अदा करती है। बड़े ज़मींदार ज़्यादा वसाइल और सहूलियात तक रसाई रखते हैं, जबकि छोटे किसान महदूद ज़मीन और कम सरमाया के बायस मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इस सूरत हाल में दही मुआशरे में मौशी अदम मसावात मजीद बढ़ रही है। ज़रिय शोबे में हकूमती पॉलिसियों के अदम तसलसल ने भी मसाइल को गहरा किया है। किसानों को अक्सर कीमतों, सब्सिडी और ज़रिय सहूलियात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है। इसके नतीजे में किसान मौशी तहफ़ुज़ से महरूम महसूस करते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामीन, पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त तेजी से बदलते हुए समाजी, मुआशी और सकाफती हालात से गुजर रहा है, जिसके असरात आवाम की जहनी सेहत पर नुमाया तौर पर जाहिर हो रहे हैं। रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल, मौशी दबाव, समाजी तवक्कोआत और गैर यकीनी सूरत हाल ने नफसियाती दबाव में मुसलसल इजाफा कर दिया है। माजी में जहनी वसाइल को महदूद सतह पर देखा जाता था, मगर अब ये मसला हर उम्र, तबके और तबको फिक्र के अफराद को मुतासर करता दिखाई दे रहा है। नौजवान, तलबा, मुलाजमत पेशा अफराद, खवातीन और बुजुर्ग सब मुख्तलिफ नवियत के जहनी दबाव और बेचैनी का सामना कर रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान में नफसियाती दबाव की एक बड़ी वजह मुआशी मुश्किलात हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कम आमदनी और बढ़ते हुए अखराजात ने आम शहरी की जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। मुतवस्त और कम आमदनी वाले तबकात मुसलसल माली दबाव का शिकार है, जहाँ रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल महसूस होने लगा है। यही मुआशी बेयकीनी जहनी परेशानी, खौफ और बेचैनी को बढ़ा रही है। तालीमी दबाव भी नौजवान नस्ल में नफसियाती मसाइल को बढ़ा रहा है। इम्तहानात, नंबरों की दौड़, करियर के खदशात और वालदैन और माशरे की बुलंद तवक्कोआत तलबा को मुसलसल दबाव में रख रही है। कई नौजवान नाकामी के खौफ, मुकाबले की फिजा और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस जहनी थकन और इज़्तिराब महसूस कर रहे हैं। समीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने भी नफसियाती दबाव में अहम किरदार अदा किया है। मुसलसल मुआजना, दिखावे की सकाफत, गैर हकीकी तर्ज जिंदगी और ऑनलाइन तनकीद लोगों की जहनी कैफियत को मुतासर कर रही है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियों और आसाइशों को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगती है, जिससे एहसास महरूमी और मायूसी बढ़ रही है। खानदानी निज़ाम में तब्दीलियां भी जहनी दबाव की एक अहम समाजी वजह बन रही है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम कमज़ोर हो रहा है और अफराद में जज्बाती फासले बढ़ रहे हैं। मसरूफ तर्ज जिंदगी, घरेलू तनाजात और बाहमी राबतों में कमी के बायस कई लोग तन्हाई और जज्बाती अदम तहफ्फुज का शिकार हो रहे हैं। सामिन, शहरी जिंदगी का दबाव भी इस मसले को मजीद गहरा कर रहा है। बड़े शहरों में ट्रैफिक, आलूदगी, मसरूफ मालूमात, महदूद वक्त और

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: पयामे सुबह
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
1: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियत से बात,
2: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
1: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
2: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
1: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर,
2: अब एक नए अंदाज में।
1: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
2: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
1: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
2: पयामे सुबह।

आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 8:45 हो रहे हैं। समीन, अब हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का

0: राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
1: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक

0: था वही बक्सर हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। रात के 9 बज चुके हैं। समीन, आइए चंद फिल्मी नगमे समाप्त करते हैं। आगाज में यह है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम है रखवाला।

समीन, फिल्मी नगमे अभी आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे थे। आखिर पर आपने फिल्म काजल से नगमा सुना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और RFM 103.5 MHz पर। 9:15 हो रहे हैं। समीन, खबरों के लिए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वज़ीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के TMC इंतजामिया ने

0: नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की ब्रेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर DTC बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। तहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोछर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर JT Vance ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी जेर इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालिबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अलिफ तआवुन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने आबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़्ज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमत नामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयां और नकल मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ़ुज मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग

0: शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाइजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम।
1: आकाशवाणी श्रीनगर।
2: हेलो रेडियो किलने वली बोजो सेहत मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो किलने
3: प्रोग्राम हेलो रेडियो किलने खैर छस बु तुहद मेजबान सलीम फारूक बोजन वालस खिदमत मज अलैकुम अर्ज करान मौजूद समाइन सान अजकी शुमार मौजू छ डायबिटीज यानि शुगर बेमार तो सैन अज मेहमान डॉक्टर मारूफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर बशीर अहमद लावी सब डॉक्टर सब अजक शुमार मई खैर मकदम कर
4: शुक्रिया सलीम सब
3: डॉक्टर सब चूंकि मौजू गो मुश्कस इस शुगर बेमार यह बसान दौ खो दौ हन जन कार्ड कड़ान तो डॉक्टर सब सारे ब्रह तश जान शुगर बेमार अम क्या कौट ज्यादा कार्ड तो बे कित पी शुगर ग
4: सलीम सब तुहुंद सवाल चु बड़ा रेलिवेंट अम ब्रो कि बह दुम तुहंदिस सवाल जवाब बह वन कि शुगर बेमार क्या आम तौर इंसान क्या खेवान तो यम सात यह खेन पत म्यादस मज अंदरमन मज हजम चु गसान पत चु यह ब्रेक गसान यह फुटान केंचन चीजन मज यम जन जरूरी चु खंडिक चीज कार्बोहाइड्रेट्स अलग प्रोटीन यम जन मसल माज बनान तम अलग चर्बी अलग यम त्रनवे चीज जरूरत बीच कें एसेंशियल यम जन जरूरी अस जूस न्यूट्रिएंट्स जरूरत विटामिन्स तिमन मज ब्रेक गसान तो अम नब यह खंडुक पार्ट चु कार्बोहाइड्रेट आसान यह बड़ जरूरी सपोज तुम तो बहुत कत कर अत मज ग्लूकोज जरूरत यह सेल यम जन चाहे जेवि हिंद सेल माइंड सेल कनन हज बोजन सेल इन मज ग्लूकोज लगान जरूरत तेली एनर्जी अति नेरन हरारत नेरन तेली हेकान अस क्या काम कर गो आम तौर क्या यम सत खेवान पत यम सत डाइजेस्ट गसान पत जन यह ग्लूकोज आसान यही पत अंदर गसान खूनस मज तो अत ग्लूकोजस अत इस्तेमाल करने खतर कशिर पे यम सत सेल गेट अरवाजस पे आसान ये।

एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। आने वाले दो गीत आपको पता है किसके हैं? जी हाँ, पहला गीत है जावेद अख्तर का लिखा, आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में होगा। संगीत आजी बर्मन का है, फिल्म का नाम है सागर। और इसके बाद आप सुनेंगे मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है आहुति। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, गीत आनंद बख्शी के लिखे हुए थे। इन दो गीतों का आनंद आप लीजिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

11:41 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत, और ये है लता जी की आवाज, साथ होगा किशोर कुमार का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

जी हाँ दोस्तों, ये ना सिर्फ हमारी है, ना सिर्फ आपकी है, ये है हम सब की अपनी आकाशवाणी। और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM गोल्ड, गीत मेरे मनमीत। और आज आपके संग है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे आरडी बर्मन का संगीत पथ, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत है, फिल्म का नाम है पुकार। और इसके बाद जो गीत होगा वो संगीत पथ है राजेश रोशन का, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज होगी, फिल्म का नाम है बातों बातों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मनमीत।

जी हाँ, सुनते कहते बातों बातों में प्यार तो हो ही जाएगा जब ऐसे ऐसे मधुर गीत चलेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 11:55 और 35 सेकंड हो चुके हैं। अगले गीत के बारे में आपको बता दूं, लता जी की आवाज में होगा ये गीत। एसडी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है जिद्दी। 1964 में ये फिल्म आई थी। और इसी गीत के साथ अर्पना चाहेगी इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत। हंसते मुस्कुराते यूं ही हमेशा रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा, नमस्कार। लीजिए इस गीत का आनंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फंड जारी करने और उसके उपयोग की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा 3.0 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से SSA PM पोषण उल्लास PMC और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वयन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित में भारत में सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने कल नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा।

0: वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

खट्टा मीठा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, वरना इस दुनिया में हर किसी को दिल से चाहने वाले कहां नसीब होते हैं। कुछ पल जो तुम्हारे साथ गुजारे, वही आज भी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे लगते हैं। वक्त गुजर गया, मौसम बदल गए, मगर उस मोहब्बत की खुशबू अब भी दिल में वैसी ही बसी है।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आज मोहब्बत अपने सबसे हसीन अंदाज में एक नई दास्तान लिखने चली है। दो अजनबी दिलों की मुलाकात से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे ख्वाब बनकर आंखों में उतरती गई। इसमें चाहत की मासूमियत है, इंतजार की बेचैनी है और वो एहसास भी जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि महसूस करना सिखा देता है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज्म सुनी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अमीर मीनाई ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चांद बादलों से निकलकर धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। हर पल चेहरे की एक नई मासूमियत सामने आती है और देखने वाला बस उसी हुस्न में खोता चला जाता है। कुछ खूबसूरती शोर नहीं करती, वो बस आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 38 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिकंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार कभी कम मत करना, चाहे जिंदगी कितने ही इम्तिहान ले ले। कभी रूठ जाना, कभी शिकायत कर लेना, कभी खामोश भी हो जाना, मगर दिल से मोहब्बत कम मत होने देना। रिश्ते वही खूबसूरत लगते हैं जहां नाराजगी भी हो, तकरार भी हो, लेकिन साथ छोड़ देने का ख्याल कभी ना हो। सितम सहलेंगे, दर्द भी सहलेंगे, बस इतना वादा रहे कि प्यार हमेशा पहले जैसा बना रहे।

हाथ की सफाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब भी जिंदगी थका दे हम एक दूसरे का सुकून बने, जब भी आंखें नम हो एक दूसरे की मुस्कान बन जाएं, नाराजगी आए तो पल भर की हो मगर मोहब्बत उम्र भर की हो, ये वादा रहा।

और कौन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। पहली बार जब उसने मेरा हाथ थामा तो जैसे वक्त एक पल के लिए ठहर

उसकी आंखों में हल्की सी हया थी, होठों पर धीमी सी मुस्कान। उस एक पल में जैसे सारी दुनिया बदल गई। दिल की धड़कनों ने कोई नया गीत छेड़ दिया। हवा भी कुछ ज्यादा ही सुरीली लगने लगी। उसके हाथ की गर्माहट अब भी मेरी हथेलियों में बसी है और वो धीमी सी आवाज आज भी कानों में वैसे ही गूंजती है। कुछ लम्हे छोटे होते हैं मगर पूरी जिंदगी बन जाते हैं।

0: कलाकार फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:57 और ठीक 36 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव R. तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग फ्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

आंखें फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में और संगीत दिया दत्ता एम ने। नजर का मिलकर झुक जाना मोहब्बत की निशानी है, दिलों में कुछ अनकहा सा हो तो खामोशी भी कहानी है। लब चाहे कुछ ना कह पाए आंखें सब कह जाती हैं, एक मासूम सी झिझक में ही चाहत की रवानी है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। आज मेरे मन में जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, हर तरफ एक मीठी सी धुन बिखरी हुई महसूस होती है। बिना किसी वजह के दिल खुश है, हवा भी सुरीली लग रही है और शाम में एक अलग ही अपनापन उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे किसी की याद चुपके से आकर मन के आंगन में बैठ गई हो और उसकी मौजूदगी से हर एहसास मधुर हो उठा हो।

उजाला फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मेरा नादान बालमा जी की बात कहाँ समझ पाता है, मेरी आंखों की खामोशी, दिल की हल्की सी बेचैनी और छुपे हुए एहसास भी उससे अनकहे ही रह जाते हैं। मैं चाह कर भी अपने मन की बात कह नहीं पाती और वो भोलेपन में मुस्कुराकर हर बात टाल देता है। फिर भी उसकी यही सादगी दिल को अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत शब्दों से नहीं मासूम अदाओं से महसूस होती है।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहानी। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। शायद मोहब्बत जितनी गहरी होती है उसे खो देने का एहसास भी उतना ही गहरा हो जाता है। हर खुशी के साथ एक छोटी सी बेचैनी जुड़ जाती है कि ये खूबसूरत साथ कहीं वक्त की नजर न लग जाए। फिर भी दिल यही चाहता है कि ये रिश्ता यूं ही बना रहे, जैसे किसी मधुर गीत की धुन जो कभी खत्म नहीं होती।

हरियाली और रास्ता फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, मगर हर रास्ता फिर तेरी ही तरफ मुड़ जाता है। जितना तुझे भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही तेरा एहसास और गहरा हो जाता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि खामोशी में और भी करीब आ जाती हैं। दिल समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोहब्बत का असर इतनी आसानी से कहां मिटता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मदारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान ही लिया है। तेरी बातों की मिठास, तेरी निगाहों का असर और तेरी मुस्कुराहट का जादू अब दिल से छुपा नहीं है। पहले जो एहसास सिर्फ एक मासूम आकर्षण लगता था, अब समझ आया कि वो धीरे धीरे मोहब्बत बन गया था। तो चुपचाप दिल में उतर गया और मुझे खबर भी ना हुई

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 51 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नागिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा

0: प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग क्लाइंग 5 दिन की यात्रा पर भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग फ्लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

हसीना मान जाएगी फिल्म से आपने गाना सुना, रफी की आवाज में, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा अख्तर रुमानी ने और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। अलग अलग एहसास और जज्बात ही इंसानी जिंदगी में रंग भरते हैं। कभी दिल खुशी से झूम उठता है तो कभी किसी अनकहे दर्द की खामोशी भीतर उतर जाती है। मोहब्बत, इंतजार, उम्मीद, तन्हाई, अपनापन, बिछड़ना, यही सब मिलकर इंसान को सिर्फ जिंदा नहीं रखते बल्कि उसे महसूस करना सिखाते हैं। जिंदगी दरअसल उन लम्हों का नाम है जहां हर एहसास दिल पर कोई नई दास्तान लिख जाता है।

दाग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक हल्की सी बेचैनी है, कुछ मीठे ख्वाब हैं और तेरी यादों की धीमी सी धड़कन भी। लब खामोश हैं मगर दिल आज भी तेरे नाम की दास्तान दोहराना चाहता है। अगर तू पास बैठे तो शायद ये दिल अपने सारे राज मुस्कुरा कर खोल दे।

सच्चा झूठा फिल्म का आपने गाना सुना रफी और लता की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तुम ही तुम मुझसे बातें करती हो तो दिल को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में भी कोई प्यार का इरादा छुपा है। तुम्हारी हर बात में एक अपनापन सा महसूस होता है जैसे तुम सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने एहसास भी मेरे करीब ला रही हो। शायद यही वजह है कि अब तुम्हारी आवाज और तुम्हारी बातें दिल को पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी हैं।

मेरे हमसफर फिल्म का गाना आपने सुना। लता और मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मेरे हुजूर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वो खुशी मिली है मुझको कि दिल खुशी से भर उठा है, बरसों से जिस एहसास का इंतजार था जैसे आज वो मेरे दामन में आकर ठहर गया हो। हर तरफ एक नई रोशनी, एक नया सुकून महसूस होता है। जी चाहता है कि ये पल यूं ही ठहर जाएं और इस खुशी की मिठास हमेशा दिल में बसी रहे।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। दिल ने फिर वही पुरानी राहों पर उनकी आहट ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन इंतजार के सिवा कुछ हाथ ना लगा। यादें तो हर बार चली आती हैं बिना बुलाए बिना दस्तक दिए, बस जिनके लिए ये दिल धड़कता है वही जाने क्यों आने में देर कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि उनकी याद ही उनका सबसे सच्चा पैगाम है जो हर तन्हा पल में साथ निभाने चली आती हैं।

ये रात फिर ना आएगी। रफी और आशा की आवाज में आपने गीत सुना। अजीज कश्मीरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। बिछड़ना अगर जरूरी है तो बिछड़ जाओ, मगर उम्मीद का एक दिया जलता रहने दो। दिल को ये तसल्ली रहे कि ये मुलाकात आखिरी नहीं है और किसी

पर फिर से राहें मिलेंगी। कभी किसी सुहानी शाम, किसी मुस्कुराते लम्हे में हम फिर आमने सामने होंगे और अधूरी बातें पूरी कर सकेंगे।

कोहरा फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिला

0: समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हो।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a 4-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen this.

रात के 3:11 और 17 सेकंड हुए हैं। युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही लेकर आज मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दिल जिसकी आवाज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं और जो हमारे दिल के करीब होते हैं, वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। हम उनकी तस्वीर अपने दिल में बसाए रहते हैं और वो जैसे कुछ

हर एक तस्वीर अपनी, मिटा दी हमने जमाने से हर एक तस्वीर अपनी, पर दिल में सिर्फ एक तेरी ही तस्वीर बाकी है।

ये वो दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता। ना पूछो ये कहां, कब और कैसे हो जाती है। ये वो सौदा है जो सोच समझ कर नहीं होता।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म माया से अभी आपने ये गीत सुना। मोहब्बत का कोई मौसम कोई मंजिल नहीं होती, मोहब्बत का कोई मौसम कोई मंजिल नहीं होती।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शक्ति से अभी आपने गीत सुना, जो छुपाए से ना छुपे वो अंदाज है मोहब्बत, जो छुपाए से ना छुपे वो अंदाज है मोहब्बत, जो तो फिर कैसी वो मोहब्बत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म ब्रह्मचारी से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म सिलसिला से।

कभी जो सपना था आज वो पा लिया है, कभी जो सपना था आज वो पा लिया है, तुम्हारी मोहब्बत को दिल में बसा लिया है। अब कोई तमन्ना नहीं इस दिल में बाकी, मैंने जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब सजा लिया है।

0: अभी आपने ये गीत सुना बिरजू उस्ताद फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए अब अगला गीत सुनते हैं नाइट इन लंदन फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये केवल एक गीत नहीं बल्कि उम्र भर साथ में वफा और कभी ना मिटने वाली यादों का एक बेहद खूबसूरत वादा है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप आए बहार आई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म बहारों के सपने से।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग आज 5 दिन के भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे।

0: यात्रा के दौरान म्यांमा के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended, and the state government has provided land for border fencing within a single week.

सुबह के 4:11 और 11 सेकंड हुए हैं और सुबह की इस ठंडी ठंडी हवा के साथ अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त तो उठ गए होंगे और अपने कर्म जो आज आपने करने हैं उन पर काम करने लग गए होंगे और करना भी चाहिए। इस दुनिया में रहना है तो पहचान बनानी होगी, ठहर कर नहीं लहरों से राह चुरा कर चलनी होगी। यहां बातों से नहीं कर्मों से सिक्का चलता है, किस्मत के भरोसे नहीं खुद की मेहनत से मुकद्दर बदल

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इस दुनिया में हमें कई बार ना चाहते हुए भी दुनियादारी निभानी पड़ती है और मुस्कुराकर दुनिया के साथ चलना पड़ता है। आइए सुनते हैं दुनियादारी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, मुस्कुराते हुए दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी और फूल और कांटे दोनों से ही दोस्ती करना सीखिए, यानी सुख और दुख दोनों में ही आप तालमेल बिठा सकें, ऐसा कुछ कीजिए। आइए सुनते हैं दुनिया झुकती है फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपके दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म जागृति से मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें दुख की चिंता ज्यादा सताती है, जबकि ये निश्चित ही है कि दुख है तो सुख भी आएगा ही, और सुख है तो दुख भी आना लाजमी है। आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कश्मीर की कली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध को त्याग कर प्यार करना सीखिए, फिर देखिए आपके जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। आइए सुनते हैं फूल और पत्थर फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जमीर से अभी आपने गीत सुना। मन की शक्ति जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और दोस्तों अगर आपका मन मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं वाणी जयराम और साथियों की आवाज में फिल्म गुड्डी से ये गीत।

दोस्तों, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी मन की शक्ति को भी हमेशा बरकरार रखिए। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया जिला पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन गया के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल म्यांमा के राष्ट्रपति की म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक

मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह वाणिज्यिक पैमाने पर निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को शक्ति प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल www.unclaimedaassessedtsportal.in एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भजन जो गाया है नंदिनी शरण ने।

दोस्तों, ये दुनिया रंग बिरंगी है और कौन अपना रंग कब बदल ले कुछ नहीं पता। और इस रंग बिरंगी पतंग यानी दुनिया को उड़ाने वाला कौन है इसका कुछ पता नहीं। आइए सुनते हैं पतंग फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

सुबह के समय पनघट के किनारे पर पानी भरने वाली गोपियों और राधा कृष्ण के नटखट और पवित्र प्रेम के माहौल को आप हूबहू अपनी आंखों के सामने मिला सकते हैं इस गीत के माध्यम से जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, मेला फिल्म से मुकेश की आवाज में।

शिकायत नहीं है तुझसे प्रभु, बस एक गुजारिश है। शिकायत नहीं है तुझसे प्रभु, बस एक गुजारिश है कि इस जलते हुए जहां पर रहम की एक बारिश हो। तू देख सके इंसानों के आंसू अपनी आंखों से, बस इतनी सी इस टूटे दिल की ख्वाहिश है। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म बहार से ये गीत।